मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57:10 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

देश प्रेम केवल सीमाओं तक सीमित भावना नहीं, बल्कि वह सम्मान है जो हमें अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने लोगों से जोड़ता है। जब दिल में वतन के लिए गर्व हो तो हर धड़कन में राष्ट्रभक्ति सुनाई देती है। इसी भावना के साथ प्रस्तुत है ये पहला गीत।

ईश्वर को पाने के लिए केवल पूजा ही जरूरी नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया गया हर अच्छा कर्म भी भक्ति बन जाता है। जब कोई किसी का दुख बांटता है, किसी निराश चेहरे पर मुस्कान लाता है, वहीं ईश्वर का सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। इन्हीं भावों के साथ सुनते हैं अगला भजन।

श्री कृष्ण का नाम लेते ही मन में प्रेम, शांति और अपनापन उतर आता है। उनकी मुरली की मधुर तान जीवन की उलझनों को सरल बना देती है। कृष्ण भक्ति हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। प्रस्तुत है ये अगली रचना।

माँ वह शक्ति है जिसकी ममता में पूरा संसार समाया होता है। उसकी दुआएं हर मुश्किल में ढाल बन जाती है। माँ का प्रेम जीवन का सबसे सच्चा और पवित्र एहसास है। इसी पवित्र भावना के साथ प्रस्तुत है आज की वंदना का अंतिम भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब सुनिए आज का चिंतन। आलेख किंशुक चौहान का है, वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का।
1: संतुष्टि या संतोष केवल एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी वर्तमान परिस्थितियों और उपलब्ध साधनों के साथ मानसिक शांति का अनुभव करता है। आधुनिक युग में जहां और अधिक पाने की होड़ लगी है, वहां संतुष्टि ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो मनुष्य को आंतरिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। भारतीय दर्शन में संतोष को एक महान गुण माना गया है। संतोष खुशी का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपनी मौजूदा परिस्थितियों से पूर्णतः संतुष्ट और शांत होता है। श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों में भी संतोष को दैवीय संपदा का भाग माना गया है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है बल्कि यह वह बिंदु है जहां मनुष्य अपने प्रयासों के फल को स्वीकार कर लेता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा नई वस्तुओं की कामना करता है। मनोविज्ञान कहता है कि एक इच्छा पूरी होने पर तुरंत दूसरी जन्म लेती है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो यह मानसिक तनाव और पछतावे का कारण बनता है। मजबूत इच्छा शक्ति हमें प्राथमिकताओं को तय करने में मदद करती है जिससे मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव होता है और हम सकारात्मकता महसूस करते हैं। संतुष्टि वह मानसिक ब्रेक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पास वह पर्याप्त है। यह हमें तुलना के जाल से बाहर निकालता है। व्यक्तिगत स्तर पर संतुष्टि का अर्थ स्वयं को जानना और स्वीकार करना है। स्वयं को जानने का अर्थ विश्व के साथ अपने संबंधों को समझना है। जब हम अपनी रुचियों को पहचानते हैं तो हमें गहरा संतोष मिलता है। कार्यस्थल पर संतुष्टि का अर्थ केवल वेतन नहीं बल्कि कार्यों में सार्थकता खोजना है। प्रभावी समय प्रबंधन और रुचियों के बीच संतुलन पेशेवर संतुष्टि की कुंजी है। दूसरों को निःस्वार्थ मदद करने से मिलने वाली संतुष्टि किसी भी भौतिक पुरस्कार से बड़ी होती है। संतुष्टि रातों रात नहीं आती, यह निरंतर अभ्यास का विषय है। उन चीजों की सूची बनाएं जो आपके पास है। यह ध्यान हटाकर अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाता है। सादगी ही संतुष्टि की जननी है। अर्थ के अर्जन और रक्षण के साथ साथ वृत्तियों पर नियंत्रण को आवश्यक बताया है। दूसरों की सफलता को अपनी विफलता न समझें। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा भिन्न होती है। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताएं और अपने विचारों का विश्लेषण करें। खुशी और संतुष्टि के लिए हम अपनी पसंद का कोई भी काम कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हम दिन भर कोई न कोई काम या कोशिश करते रहते हैं और संतुष्टि की तलाश में रहते हैं। आमतौर पर हम खुशी और संतुष्टि को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में एक सूत के धागे जितना अंतर होता है। खुशी संतुष्टि तक पहुंचने का रास्ता है। जहां संतुष्टि एक लॉन्ग टर्म इमोशन है, वहीं खुशी पल पल का अनुभव है। दोनों के बीच संतुलन लाइफ को सही दिशा दे सकता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप कब संतुष्टि महसूस करते हैं? जब आप कुछ हासिल करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की हो, तो उसे हासिल करने के बाद आपको संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि केवल कुछ पाने से नहीं होती, यह आपके प्रयासों का फल होती है। यह आपको अपनी मेहनत का सच्चा मूल्यांकन करने का अवसर देती है। खुशी जरूरी है या संतुष्टि? जीवन में दोनों का बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। खुशी हमें आत्मविश्वास देती है, मानसिक शांति देती है और स्ट्रेस कम करती है। संतुष्टि सिखाती है कि हमें जो कुछ हासिल करना है उसके लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। संतुष्टि पाने के लिए हम कई सारे काम करते हैं। इन सब के बावजूद हम कई बार खाली हाथ रह जाते हैं। इसकी वजह यह है कि संतुष्टि कोई क्षणिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक सतत अभ्यास है। सच्चा सुख रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के पूरा होने के बाद मानसिक तृप्ति में निहित है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि रूपी धन है वह विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है। अंततः संतुष्टि एक चुनाव है जो हमें हर दिन करना होता है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। आलेख किंशुक चौहान का और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का था।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें आज जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा। विषय है देवी अहिल्याबाई और जल संरक्षण।
1: किसान भाई बहनों के डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों, आज अपन बात करा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने जल संरक्षण का बारे में। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर एक कुशल प्रशासक तो थी सही, पर उनका साथ साथ वे एक समाज सुधारक, धर्मपरायण न जनहितकारी शासिका थी। पर अपन उनके ज्यादा याद करा उन जल संरक्षण, जल का जिनने विशेष स्थान दियो उनका बारे में। अहिल्याबाई होलकर ने पानी की आवश्यकता के समझते हुए कुआ, बावड़ी, तालाब, घाट न जलाशय बनाया, जिसका माध्यम से जनता के शुद्ध जल उपलब्ध हो न जल संरक्षण का महत्व कभी समझियो। वे इन बात के बहुत अच्छा तरीका से जानती थी कि यदि जल के सुरक्षित रख लियो, उसको उचित प्रबंधन कर लियो, तो आने वाली पीढ़ी न के उसे बहुत अच्छो लाभ मिलेगो। इन्हीं सोच का कारण उनने अपना राज्य में, अपना देश में अनेक तीर्थ स्थल न पे जल संरचना को निर्माण करायो। अहिल्याबाई होलकर ने अपना शासन काल में बहुत सारा कुआ न बावड़ी ने बनवाई। उनके मालूम था कि गांव-गांव में कुआ होएगा तो लोग उनके बहुत दूर पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्हीं बावड़ियों में वर्षा जल को एकत्रीकरण होतो तो ने लंबा समय तक वे उपयोग में लेता था। ने साथ में बावड़ी में पानी भरेल होने के कारण भू स्तर जल भी अच्छो बनेल रहतो थो। उनकी बनायल कई बावड़ी आज भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र न देश का अन्य क्षेत्र न में भी अपने देखने के मिले। अहिल्याबाई होलकर ने बहुत सारा तालाब ने जलाशयों को निर्माण भी करायो। तालाब वर्षा जल के संग्रहित करता था न इनके साथ खेती का, सिंचाई की सुविधा भी मिलती थी और पशुहन के भी लगातार पानी की उपलब्धता रहती थी। जलाशय के निर्माण से जल संरक्षण हुयो न पर्यावरण संतुलन भी बनियो। इससे आसपास हरियाली बढ़ी और लोगों का जीवन स्तर में भी बहुत सुधार हुयो। अब अपन बात करा अहिल्याबाई होलकर ने जी नदी संरक्षण का कार्य किया उसका बारा में। अपन जाना की पवित्र नदी के किनारे बहुत सुंदर घाट अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है। विशेष रूप से काशी, उज्जैन, नासिक न महेश्वर में उनका घाट आज भी लोग देखने जाए वो बहुत प्रसिद्ध घाट है। इन घाट के निर्माण से कई हुई हो कि लोग उनके नदी तक सुरक्षित पहुंचने में बहुत सुविधा होगी। जल को उपयोग बहुत व्यवस्थित होगी। नदी उनकी स्वच्छता ने संरक्षण पे भी बहुत ध्यान दी। वे धार्मिक आस्था का साथ साथ नदी उनकी स्वच्छता और संरक्षण पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे बनिया होगा घाट, कुआ और जल निकासी की योजनाएं जी है वे देखने लायक है। उनको ये मानने थो कि आज का समय में होने वाला पर्याप्त जल की व्यवस्था सी ज्यादा आवश्यक है। उनकी ये जल व्यवस्था केवल उना समय की जरूरत के लिए नहीं थो, बल्कि भविष्य के ध्यान में रखी के बनाई गई पूरी योजना थी। वे इन्हीं बात के बहुत अच्छा तरीका से जानती थी कि प्रकृति ने मानव जीवन एक दूसरा से पूरी तरीका से जुड़िया हुआ है। उनने जल स्रोत न के आसपास बहुत सारो वृक्षारोपण भी कराया था ताकि मिट्टी को कटाव कम हो न जल लंबा समय तक सुरक्षित भी बने रहे। आज अपन देखा कि पूरी दुनिया जल संकट की समस्या से जूझी रही है, परेशान है। आज अपन देख ही रहा है कि बहुत सारा दुनिया के कई क्षेत्र में पानी की भारी कमी हुई रही है। जमीन का अंदर को जो जल है लगातार नीचे जा रही है। ऐसा समय में अहिल्याबाई होलकर का जल संरक्षण का कार्य हमके प्रेरणा दे। उनकी दूरदर्शिता न जन सेवा की भावना आज भी लोग उनके प्रेरणा को काम करें। जल बच्चे को तोज आने वाली पीढ़ियों सुरक्षित रहेगी। जल है तो कल है, यो संदेश अहिल्याबाई होलकर ने हमारे बहुत सदी पहले दे दियो तो आज हमके उनके कार्य उनके आगे बढ़ानु है और जल के बचानु है। तो आज किसान भाई बहनों से हमारो योज कहनु है।
0: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी जानकारी दे रही थी डॉक्टर अनुराधा शर्मा। विषय था देवी अहिल्याबाई और जल संरक्षण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस कान का आज का प्रसंग।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम योग निरोग। विषय होगा ध्यान और योग निद्रा से कैसे बनाए जीवन को आनंदमय। वार्ताकार होंगी सुनीता जोशी। 7:35 पर आप सुन सकते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। सुबह 8:30 कार्यक्रम होगा कल के सितारे बच्चे हमारे। इसमें आज सुनिए बच्चों के मुख से देवी अहिल्याबाई होलकर के विषय में। लोक संगीत में सुबह 9:00 कलाकार होंगे संजय महाजन और सुगम संगीत में 9:15 आप सुन सकते हैं हरिओम शरण को। सुबह 9:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन। राग होगा अल्हैया बिलावल। जिले की चिट्ठी अनुप्रसारित की जाएगी भोपाल केंद्र से सुबह 10:00। 10:05 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात का प्रसारण किया जाएगा। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दिन में 12:02 से भोपाल केंद्र से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा। इसमें 12:02 पर सुनिए फिल्म संगीत। दिन में 12:30 संग्रहालय से महिला कार्यक्रम होगा दिन में 1:00। लोक संगीत 1:30। सुगम संगीत 1:45 पर। दिन में 2:00 फिल्म संगीत और बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान प्रसारित किया जाएगा दिन में 2:30।

अब एक नजर शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। संध्या 5 बजे हमारी शाम की सभा आरंभ होगी कार्यक्रम युववाणी के साथ। इसमें आज का आकर्षण रहेगा क्रम युवा तरंग। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पर केंद्रित ये कार्यक्रम होगा। 5:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत।

शाम 6:30 बजे सुगम संगीत में कलाकार होंगे हरिओम शरण। लोक संगीत में 6:45 पर आज हम आपको सुनवाएंगे बद्रीलाल मालवीय के गाए लोकगीत। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें आज सुनिएगा तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर विनोद अंधारे से ली गई भेंट वार्ता, साथ ही आप सुनेंगे लोक संगीत। रात 8:00 सुर्खियों में ये कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा भोपाल केंद्र से, और रात 8:15 सुनिएगा डगर विकास की, इसका अनुप्रसारण भी भोपाल केंद्र से किया जाएगा। रात 9:15 सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत प्रसारित किया जाएगा। रात 9:30 पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मन भावन।

श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम मन की बात। इसका अनुप्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे।

ये रूपरेखा थी आज दिन भर में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देशों की अदालत में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। पहला मैच भारत ने जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 4.96 मीटर पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम योग निरोग। 8:30 कार्यक्रम होगा कल के सितारे बच्चे हमारे, और दिन में 11:00 सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम मन की बात। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज

0: शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉ. यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अपने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता कई द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है।
3: हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से, महान पुरोधा गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है।
0: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगर मालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिर सेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पुल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। अब बात मौसम की। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में देर रात तेज आंधी चली, जिसके कारण जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में रातें भी बेहद गर्म रहीं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में 2 महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिव्रम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के 4थे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम योग निरोग।

श्रोताओं नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज के योग निरोग कार्यक्रम का विषय है

0: ध्यान और योग निद्रा से कैसे बनाएं जीवन को आनंदमय, और इस विषय पर बात करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में आई हुई हैं सुनीता जोशी जी, जो कि ध्यान, योग और प्राकृतिक चिकित्सक हैं, साथ ही जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल एक्सपर्ट भी हैं। सुनीता जी, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: जैसा कि ध्यान शब्द से पता चलता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं, किसी एक विषय के ऊपर फोकस हो गए हैं, तो सबकी कई बार लोगों की धारणाएं अलग अलग हैं, लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है कि ध्यान होता क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि ध्यान किसको कहेंगे।
1: सबसे पहले तो जो भी कार्य किया जाए ध्यान पूर्वक किया जाए वह ध्यान है।
0: वाह,
1: एक सामान्य मनुष्य के लिए ये लागू होता है,
0: एक सामान्य परिभाषा हो गई।
1: हाँ जी, लेकिन आगे जब हम बढ़ते हैं आध्यात्मिक मार्ग में और मन की शांति चाहते हैं तो फिर हमको ध्यान का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में मन की स्थिति बड़ी डावाडोल है, संतुष्टि का भाव नहीं है, असंतुष्टि सबके मन में है, अशांति है, तो हमें आज के समय में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारे ऋषि मुनि बरसों से ध्यान साधना कर रहे हैं और उन्होंने आनंद की अनुभूति की है, लेकिन आज के समय में व्यक्ति आनंदित नहीं है, दुखी, परेशान है, तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि ध्यान किया जाए।
0: बिल्कुल। और कई बार हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर कई जो विशेषज्ञ हैं उनके वीडियोस पड़े हैं कि ध्यान ऐसे करना चाहिए या ये तरीका है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है, कैसे किया जाता है, कहाँ से शुरू, या किसी विशेषज्ञ की सहायता भी लेनी होती है, किसी गुरु की सहायता लेनी होती है।
1: हाँ जी, सबसे पहले योग के जो आठ अंग हैं, अष्टांग योग कहे गए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो शुरुआत में हमें अपनी दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना रहता है, उसके बाद हम आसनों पर आते हैं, प्राणायाम, और फिर अगर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो वो बहुत सरलता से और अच्छे तरीके से होता है।
0: बिल्कुल ठीक। कैसे शुरुआत की जाए ध्यान की, कहाँ से शुरुआत की जाए और कौन सा समय उपयुक्त होता है ध्यान करने के लिए?
1: ध्यान के लिए प्रातःकाल यानी सुबह सूर्योदय के पहले सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और अगर समय नहीं है तो आप जब भी उठें, फ्रेश हों, उसके बाद आप आराम से बैठ जाएं और वहां पर भी शुरुआत कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, ध्यान कैसे शुरू किया जाए?
1: एक नए साधक के लिए ध्यान का सबसे सरल तरीका है आंखें बंद करके बैठ जाना और अपनी श्वास को देखना, और श्वास को देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पेट पर ध्यान लगाना कि पेट कैसे अंदर बाहर हो रहा है, यानी श्वास कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि मन हमारा उस जगह पर स्थिर होने लगेगा, बस यही ध्यान की शुरुआत है।
0: बहुत अच्छा। कई बार ये भी सुनने में आता है कि ध्यान से हमने ये प्राप्ति कर ली, ध्यान करके हमने ऐसा हासिल कर लिया, तो ये स्थितियाँ कब निर्मित होती हैं, वो कौन से चरण होते हैं और इसमें कितना समय लगता है?
1: हाँ जी, ध्यान शब्द जैसे हम जानते हैं कि ध्यान पूर्वक करना कार्य, तो ऐसे ही हमें रोज नियम से ध्यान करना पड़ेगा। अगर हम नियमित ध्यान करेंगे तभी हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करेंगे, और जब शांति होगी तो जो भी हम काम करेंगे या जिस भी प्रोफेशन में हैं हम उसको अच्छी तरीके से करेंगे, तो हमारी प्रोग्रेस बाहरी क्षेत्र में भी होगी और आंतरिक क्षेत्र में भी हमारी प्रोग्रेस होगी। और धीरे धीरे ध्यान करते करते मन इतना शांत होने लगता है कि आप एकदम एक ऐसे स्थिति में आ जाते हैं कि आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, यानी हर परिस्थिति में आप खुश रह पाते हैं, फिर आपको कोई शिकायत नहीं रहती है। तो जब शिकायत नहीं रहेगी, समता भाव आ जाएगा, मन शांत रहेगा, तो आप वैसे ही गृहस्थ होते हुए भी एक सन्यासी हो जाएंगे।
0: जी, और क्या किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है शुरुआत में ध्यान सीखना है तो?
1: हाँ, किसी के, कोई गुरु के सानिध्य में आपको ध्यान सीखना चाहिए।
0: क्या क्या सावधानियां होना चाहिए ध्यान करते समय एक साधक के लिए?
1: सबसे पहले तो उसका आहार हल्का होना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ देर बैठना रहेगा, तो हमारा भोजन इस प्रकार का हो कि वो भारी ना हो। सात्विक आहार होगा तो हम ध्यान ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे।
0: जी, और जहाँ तक प्रशिक्षक की बात है,

0: तो कैसे प्रशिक्षक को चुनना चाहिए? इसमें भी कोई क्राइटेरिया है, कोई लाइन खींची हुई है कि ऐसे आप प्रशिक्षक से सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे?
1: हाँ, कोई अनुभवी प्रशिक्षक है तो उनसे सीखेंगे तो आपको समझ भी बढ़ेगी और ध्यान के अभ्यास में आपकी प्रोग्रेस भी होगी।
0: ध्यान सीख जाने पर या ध्यान रोज करने पर क्या क्या फायदे होते हैं? और क्या जैसे एक समय तक हमने ध्यान किया, कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक, और फिर हम छोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो फिर नए सिरे से हमें करने में क्या नुकसान हो सकते हैं या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए।
1: ध्यान जैसे हमारे लिए भोजन आवश्यक है, वैसे मनुष्य को ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है, आज के जीवन की जो स्थिति है, इस समय जो वर्तमान में है, व्यक्ति दूसरे कामों को ज़्यादा उसको महत्व देता है, ध्यान को महत्व कम देता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जीवन में नियमित ध्यान किया जाए तो हम अपने जीवन में आगे प्रोग्रेस भी करते हैं, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों हमारी उन्नति होती। आर्थिक उन्नति कैसे होगी? जब मन शांत होगा, जो हम कार्य करेंगे वो सही तरीके से होगा और हम जिस भी क्षेत्र में हैं अपनी अच्छे से उपलब्धि हासिल करेंगे।
0: जी, और कोई समय सीमा होती है कि कितने कार्यकाल तक करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए?
1: शुरुआत में थोड़े समय के लिए कुछ मिनट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी तो आप धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएंगे। और फिर होगा क्या कि आपको खुद को एक इंटरेस्ट आने लगेगा, जिसको कहते हैं रस आने लगेगा। तो आप जितनी देर बैठेंगे आपको लगेगा कि अब आंखें खोले ही ना, मन आपका ऐसा लगेगा कि लंबे समय तक मैं ऐसे ही बैठे रहूं। तो वो समय सीमा इसमें नहीं होती, ये धीरे धीरे अपने आप बढ़ती जाती है।
0: जी।
1: और दिन में 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। आप जहां कार्य कर रहे हैं वहां पर भी आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे तो आपका मन वहां भी ध्यानस्थ हो जाएगा।
0: जी, बिल्कुल। जो हम व्यायाम करते हैं, या कहें कि हम एक दूसरा तरीका जो योगाभ्यास करते हैं, उससे ये कितना भिन्न है और फायदे उससे कैसे अलग हैं इसके?
1: मेरा ये मानना है कि हम जब योग अभ्यास करते हैं, योग साधना, योगासन, सूर्य नमस्कार, अगर हम इसको भी ध्यान के रूप में करें, यानी श्वासों के साथ जोड़कर करें, तो हमारा ध्यान की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हो जाती है। फिर हमको आगे जाकर कठिनाई नहीं होगी कि मुझे ध्यान करना है कि मुझे ध्यान नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम सही तरीके से आसन करते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं श्वास पर केंद्रित होकर, तो आपका ध्यान बहुत सरलता से लगने लगेगा।
0: इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि जीवन का जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें ध्यान समाहित है, वो जो सावधानियां हैं, जो समर्पण का भाव है, वो सब ध्यान की ही श्रेणी में आता है।
1: हाँ जी,
0: जी, बिल्कुल। अब हम कुछ बात कर लेते हैं योग निद्रा की। योग निद्रा भी इन दिनों काफी प्रचलन में है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि योग निद्रा सीखा जाए, उसके लाभ लिए जाएं। तो योग निद्रा के क्या-क्या फायदे हैं और कैसे इसको हम शुरुआत करें, कैसे सीखा जाए, कैसे किया जाए इसको?
1: योग निद्रा से हमारे अंदर जो शक्ति है, यानी हमारे में जो कैपेसिटी, हमें पता ही नहीं है। जब हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो वो अंदर से हमारी शक्ति पता चलने लगती है कि हम क्या हैं, हम अपने आप को जानने लगते हैं। दूसरा लाभ ये होता है कि 8 घंटे की नींद का लाभ हमें 45 मिनट की योग निद्रा में प्राप्त हो जाता है। यानी थकान भी दूर होती है, फिजिकल लेवल पर भी हमें स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेंटल पीस होता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति में भी बहुत लाभ मिलता है।
0: जी, और कैसे किया जाए, इसका तरीका क्या होता है योग निद्रा का, व्यक्ति स्वयं कर सकता है?
1: हाँ, स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमें अपने गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस दें, वो हमें बताते जाएं, या हम कैसेट के द्वारा या जो भी हम सुनते हैं ऑडियो वीडियो, उसके माध्यम से हम शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे धीरे हम खुद स्वयं भी कर सकते हैं।
0: जी, कैसे किया जाता है योग निद्रा को?
1: बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेटकर अपने शरीर को पूरा शिथिल करके, फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, पहले शरीर को शिथिल करना है, उसके बाद वो जो जो शब्द बोलते हैं, यानी वो बताते हैं कि आप अपना ध्यान अपने पैर पर लाइए, अपने हाथ पर लाइए, तो हमारा ध्यान पूरा उस अंग पर जाता है, तो हम बाहर के विचारों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में एक टाइम पर 50 प्रकार के विचार चलते हैं, जब हम वो सुनते हैं तो 50 में से हमारे सिर्फ एक ही विचार जो सुन रहे हैं वो रहता है।

0: और फिर हमारा ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित होने लगता है, फिर शरीर से परे भी बाहर की यात्रा भी कराई जाती है, उससे भी हमें काफी लाभ मिलता है।
1: तो क्या इसको सोते समय करना ज्यादा ठीक है या दिन में किसी भी समय हम इसको कर सकते हैं?
0: जब भी हम थकान का अनुभव करते हैं या हमारी पर्याप्त नींद नहीं हुई है या हमें कहीं स्ट्रेस रहा है दिन भर में, तो हम सोने के पहले कर सकते हैं। बस इसमें एक सावधानी है कि इसको करने के दौरान हमें नींद नहीं आना चाहिए। ये जागृत और सोने की अवस्था के मध्य का योग निद्रा है। आप जगे रहेंगे पूरी तरह से तो भी नहीं हो पाएगा, और अगर आप सो गए तो भी आप सुन नहीं पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं या यो योग निद्रा में वो क्या बता रहे हैं। इसलिए हमको जागरूक रहना है, ध्यानपूर्वक सुनते रहना है और वहां वहां में ध्यान लगाना है।
1: जी, तो योग निद्रा करने के जो प्रकार हैं वो केवल एक कोई स्टैंडर्ड उसका तरीका है या उसमें भी कुछ वेरिएशंस हैं अलग अलग लोगों के, अलग अलग विशेषज्ञों के, अलग अलग गुरुओं के?
0: हाँ, सबके थोड़े थोड़े अलग अलग विचार होते हैं, वो अलग अलग तरीके से कराते हैं, लेकिन मेन तो एक ही है कि आप अपने पहले पूरे शरीर के एक एक पार्ट को देखते हैं, फिर आपको वो बाहर की यात्रा भी कराते हैं, जैसे नदी, पहाड़, जंगल या कहीं मंदिर, ऐसी जगह पर आपको विजुलाइज कराया जाता है ताकि आपका मन वहाँ पर जाए और शरीर पूरा शिथिल हो और मन भी शांत हो।
1: सुनीता जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। और कहते हैं हम कि जो हमारी प्राणिक शक्ति है वो काफ़ी जागृत हो जाती है योग निद्रा से, तो ये जो प्राणिक शक्ति है ये कैसे हमारे लिए हीलिंग का काम करती है, हमारे रोगों को दूर करती है योग निद्रा के माध्यम से?
0: योग निद्रा का अभ्यास जब नियमित किया जाता है, शुरुआत में 21 दिन तक रोज करना रहता है, फिर वो धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन में वो रेगुलरिटी उससे हो जाती, तो हमारे अंदर कोई भी रोग है तो वो मन के कारण है। कहते हैं कि रोगों की जड़ मन है, मन को शांत और आनंदित किया जाए तो हमारे जितने ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करने लगते हैं, तो उसके बाद हम स्वस्थ होने लगते हैं। तो रोग से निरोग की ओर बढ़ने के लिए योग निद्रा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करने में हमें बहुत सहयोग देती है।
1: बहुत अच्छी जानकारी हमारी श्रोताओं के लिए है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ध्यान और योग निद्रा, इनका एक कॉम्बिनेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आप योग निद्रा करते हैं तब भी कुछ मात्रा में आप ध्यानस्थ तो हो ही जाते हैं।
0: हाँ, लेकिन है थोड़ा सा अलग। ध्यान में हम बैठ के रीढ़ सीधी रखकर करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। लेट के ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा जब आपका रीढ़ सीधी रहेगी तो आपका ध्यान ज्यादा अच्छे से लगेगा। अब इसमें पैरों की स्थिति आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और अगर कोई बीमार है, वृद्ध है, तो उसको लेटा कर भी ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि श्वासों पर केंद्रित करना है। और योग निद्रा में हम अपने एक एक अंगों पर ध्यान लगाते हैं और फिर उसकी आगे की यात्रा हम करते हैं, तो थोड़ा सा अंतर है इसमें।
1: जी, तो इन दोनों को लेके, ध्यान और योग निद्रा को लेके, कुछ और हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहती हैं, कोई और जानकारी?
0: सबसे पहले तो ध्यान हमें नियमित करना है। जैसे आहार जरूरी है शरीर के लिए, ऐसे ही हमारी मन और आत्मा के लिए ध्यान करना जरूरी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, फिर हमें यह अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान नियमित करें तो हमारा मन शांत, आनंदित और अपने जीवन में हम सुख का भरपूर अनुभव करेंगे, साथ ही साथ हम रोगों से भी मुक्त होंगे। रोगों का कारण हमें पता ही है कि मन है, तो मन जब स्वस्थ होगा तो हम स्वस्थ हो गए, हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारे सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन प्रॉपर होगा, तो हम स्वस्थ तो ऐसे ही हो जाएंगे, थोड़े से प्रयत्न से हम स्वस्थ हो जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, ये बहुत अच्छी जानकारी दे रही थी सुनीता जोशी जी, बता रही थी कि कैसे ध्यान और योग निद्रा का नियमित अभ्यास करके हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। योग निरोग में बस इतना ही। अब अनुमति दीजिए ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी को। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग निरोग। इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे ध्यान और योग निद्रा से कैसे बनाएं जीवन को आनंदमय, इस विषय पर सुनीता जोशी से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की बातचीत। आकाशवाणी इंदौर से अब सुनिए कार्यक्रम सुनहरे पल।

0: मेन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। शैलेंद्र के बोल थे, माफ कीजिए, हम दोनों फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। साहिर के बोल थे, जयदेव का संगीत था।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: कार्यक्रम सुनहरे पल में आप सुनिए 2 बीघा जमीन फिल्म का ये गीत मनाडे और लता मंगेशकर के स्वर में। शब्द रचना शैलेंद्र की है, संगीत बद्ध किया सलील चौधरी ने।

कार्यक्रम सुनहरे पल इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए कश्मीर की कली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। बोल SH बिहारी के हैं, संगीत दिया है OP नैयर ने।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में नौजवान फिल्म का गीत। साहिर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है एसडी बर्मन ने।

कार्यक्रम सुनहरे पल के आखिर में सुनिए वक्त फिल्म का गीत आशा भोसले महेंद्र कपूर के स्वर में। साहिर के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है रवि ने।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे

0: ये को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
1: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की यह भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
3: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
1: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
4: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
1: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला

0: ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
3: पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था।
4: द कावर्डली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम लास्ट ईयर आउटरेज द एंटायर नेशन एंड स्टर्ड डीप इमोशंस अक्रॉस द कंट्री। इन रिस्पॉन्स ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर टारगेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान।

0: In Karnataka, CUET retest and TMC leader Abhishek Banerjee mobbed during visit to South. 24 Parganas are the front page stories in most dailies. The Statesman informs Amit Shah on a visit to West Bengal seeks close watch on radicalization centers on border. Newspapers report US Defense Secretary Pete Hegseth describes India as a critical anchor in Indo-Pacific region. Financial Express headlines India helps maintain balance of power while the Sunday Express says no China hegemony. Hegseth flags co-production of Javelin anti-tank missile with India. The Tribune informs Vinesh fails to make Asian Games cut, promises to return to the mat. Economic Times says EV sales in fast lane, but Motor Town treads the middle path. Less than half of new launches likely to be electric as car makers unsure of transition best with multi-powertrain portfolio. Times of India cites Google fined for misdirecting searches to rivals' products. And finally, Times of India in a photo caption, Dhool Andar sweeps Rajasthan. Reports on the massive dust storm that barreled through several parts of Rajasthan, plunging several towns into darkness around 2 p.m. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defence Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a five-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे।
3: कल के सितारे बच्चे हमारे।
4: कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम सुनने वाले सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को आराधना दीदी का ढेर सारा प्यार और साथ ही प्यारे बच्चों जय हिंद।
5: जय हिंद।
4: तो बच्चों कैसे हैं आप सभी और कैसी गुजर रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ? क्या कहा, बहुत मजे से। वैसे ये तो हमें पता है प्यारे बच्चों कि आपकी मस्ती और मजे तो फुल चल रहे होंगे, है ना? क्योंकि अब इस समय पढ़ाई का तो ज्यादा टेंशन है नहीं, है ना बच्चों? हाँ, प्रोजेक्ट वगैरह या कुछ होमवर्क आपका होगा तो आप उन्हें फटाफट निपटा ही लेंगे। लेकिन हमें इस समय पता चल रहा है बच्चों कि आप सभी के दिमाग में कुछ बातें उधेड़ बुन की चल रही हैं कि मैं ये सीख लूं या मैं यहाँ की क्लास ज्वाइन कर लूं या फिर दादी नानी के घर घूम कर आऊं या कुछ नई चीजें करूं। बच्चों ऐसे में हमारा तो बस आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से यही कहना है कि आप जो भी करें या जो भी सीखें, बस कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी रुचि हो, जिसे आप करना चाहते हो या जिसमें आप आगे चलकर अपना करियर बनाना चाहते हो। यानी किसी भी चीज को सीखने से पहले बच्चों आप उस चीज को अच्छी तरह से समझ लें कि आप उसे सीखना चाहते हो या नहीं। लेकिन हाँ बच्चों, सीखने जाने के पहले ये मत सोचें कि मेरे सभी दोस्त ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं भी उसी क्लास में जाऊंगा। बच्चों इस तरह की जिद करना गलत है क्योंकि आप हैं छोटे बच्चे, इसलिए आप सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप अपने बड़े भैया, दीदी या फिर माता पिता की सलाह ले सकते हैं और जैसा वो आपके विषय में सीखने का बोले ना बच्चों, तो आप उनकी भी बातों पर गौर करें। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप अपने बड़ों की बात जरूर सुने और माने और उस दिशा में आगे बढ़ें। क्योंकि आपके बड़े आपकी रुचि, आपका कार्य करने का ढंग, आपका तरीका सब अच्छे से जानते हैं और ऐसे में आपकी वही सब गतिविधि देखकर आपको चीजें सीखने की सलाह देंगे। तो बच्चों सीखिए प्रतिदिन इन छुट्टियों में पूरी लगन, मेहनत और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ बेहतर, फुल मस्ती और धमाल के साथ, यानी कुछ

0: और बच्चों, इस छुट्टी वाले प्यारे से गीत के बाद अब बात करते हैं आज के खास दिन की। बच्चों, आज है 31 मई और 31 मई को जन्म हुआ था एक ऐसी महान विदुषी मराठा शासिका का, जिनके कार्यों ने उन्हें ना सिर्फ इंदौर के मालवा प्रांत में प्रसिद्धि दिलाई, बल्कि पूरे भारत में उन्होंने अपने कार्यों से लोगों के बीच में जगह बनाई और प्रसिद्धि के शिखर को छुआ। बच्चों, बात यदि अहिल्याबाई के जन्म की करें तो अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था। बच्चों, इनका विवाह मल्हार राव होलकर के बेटे खंडे राव होलकर से हुआ था। बहुत ही कम समय में पति की मृत्यु के बाद इन्होंने मालवा की बागडोर संभाल ली। पता है बच्चों, 1767 से 1795 तक यानी अपने 28 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने राज्य को न सिर्फ समृद्ध बनाया बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए भी बहुत सारे काम किए। यदि उनके योगदान की बात करें बच्चों, तो उन्होंने वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर सहित भारत के कई मंदिरों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। साथ ही बच्चों, पूरे भारत में 250 से अधिक मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और कुओं का निर्माण व पुनर्निर्माण करवाया। इसके साथ ही बच्चों, उन्होंने अपने राज्य के बहुत सारे विकास कार्य किए। मंदिरों के निर्माण के साथ ही विद्यालयों का भी निर्माण करवाया और गरीबों व जरूरतमंदों की हर समय और हर संभव सहायता की। इसी कारण उनका प्रशासन बच्चों ना सिर्फ न्याय संगत था बल्कि कल्याणकारी भी था। इसीलिए उन्हें लोकमाता के रूप में आज भी श्रद्धा से याद किया जाता है। तो इस तरह बच्चों, अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सिखाता है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, कितनी ही समस्याओं के बीच में हम जी रहे हों, हम अपनी हिम्मत, बुद्धि और अपने कार्यों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी कारण बच्चों, आज उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में पूरे भारत के साथ ही इंदौर में उनके नाम से अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। बच्चों, आज हम सभी लोकमाता की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और चाहते हैं बच्चों कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के साथ हम भी ऐसे ही अपने स्तर पर अच्छे अच्छे कार्य करें। तो बच्चों, ये तो थी हमारी अपनी बात लोकमाता के विषय में। और अब बच्चों, हमारे एक नन्हे दोस्त क्या बता रहे हैं अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में, जानते हैं उन्हीं से।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष जैन है। मैं माउंट इंडेक्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। आज की इस सुनहरी सुबह में मैं आपको ले चलना चाहता हूँ एक ऐसे युग में जहाँ एक विदुषी महिला ने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि इंसानियत को जीने का तरीका सिखाया। 31 मई एक तारीख नहीं, एक प्रेरणा का स्तंभ है और इस स्तंभ का नाम है अहिल्याबाई होलकर। दोस्तों, इंदौर की गलियों से जब हवा गुजरती है तो सिर्फ ठंडी नहीं होती, वो एक कहानी बसी होती है सेवा की, त्याग की और सच्चाई की। राजवाड़ा की खामोश दीवारें आज भी कहती हैं यहाँ एक ऐसी रानी ने शासन किया था जिन्होंने ताज को बोझ नहीं जिम्मेदारी समझा। उन्होंने अपनी जिंदगी में दुख देखे इतने कि आम इंसान टूट जाए, लेकिन अहिल्याबाई वो तो दर्द से और मजबूत हो जाती हैं। 1767 में जब उन्होंने मालवा का शासन संभाला तो वो कुर्सी पर बैठी हुई रानी नहीं थी, खड़ी थी अपने लोगों के साथ, उनके बीच, उनके लिए। उनका हर फैसला एक प्रश्न पूछता था, इससे मेरे लोगों का भला होगा या नहीं। और शायद इसीलिए आज भी उन्हें रानी नहीं लोक माता कहा जाता है। महेश्वर के घाट पर बैठी नर्मदा जैसे कहती है, एक रानी आई थी जिन्होंने पत्थरों को मंदिर बनवा दिया तो इंसानों को परिवार। उन्होंने काशी से सोमनाथ तक के मंदिर सजाए, लेकिन उनका असली काम क्या था? दिल जोड़ना, भरोसा बनाना और इंसाफ देना। एक पंक्ति सुनिएगा दिल से, ताज उनके सर पर था पर अहंकार नहीं, शक्ति उनके हाथ में थी पर अत्याचार नहीं, वो रानी थी पर सबसे पहले एक माँ थी। और आज जब इंदौर को हम देश का सबसे साफ शहर कहते हैं तो याद रखिए, ये सफाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, ये सोच में भी है जो अहिल्याबाई ने हमें दी। तो आज 31 मई पर इंदौर की इस पवित्र मिट्टी से मैं हूँ आपका दोस्त हर्ष, धन्यवाद।
0: और बच्चों, हर्ष की बात के बाद अब हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपनी प्यारी प्यारी आवाज में हमें सुना रहे हैं कुछ कविताएं और कहानियां। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं सबसे पहले कविता जो कि हमें सुना रही हैं हमारे बीच में बैठी प्यारी सी नन्ही सी दोस्त अनुशिका।
2: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुशिका, मैं यूकेजी क्लास 55 प्ले स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी जिसका नाम है पुस्तक भरी

0: जैन। मेरे स्कूल का नाम है डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं कक्षा एक का छात्र हूँ और मेरी कविता का नाम है जल बचाओ। जल है जीवन, जल है प्यारा, सब जीवों का यही सहारा। प्यास बुझाए, खेत खिलाए, धरती को हरियाली लाए। जल बचाओ ये है दाता, इसके बिना नहीं कुछ पाता। आओ मिलकर कसम खाए, जल को व्यर्थ न हम बहाए। धन्यवाद।
1: और बच्चों, इन प्यारे प्यारे बच्चों से इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने के बाद अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो बच्चों हमें पता है आपने भी इस गीत के साथ इस समय कर ली होगी ढेर सारी मस्ती और बहुत सारा डांस। और अब बच्चों सुनते हैं कहानी हमारे कुछ और प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों से।
1: नमस्ते, मेरा नाम कियांश है। मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ, उसका नाम है बंदर और राजा। एक दिन एक राजा था, उसका दोस्त बंदर था। वो बंदर ने उसको मदद की थी राजा को, तो राजा उसको पसंद करता था। एक दिन राजा शिकार करने गया, उसने बहुत सारे जानवरों को मारा और फिर वो थक गया, तो उसने सोचा कि आज मैं जल्दी सोऊंगा। तो जब वो सो गया तो एक मक्खी आकर उसके नाक पर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को भगाया पर वो फिर से बैठ गई। बंदर ने उसको फिर से भगाया, ऐसा बहुत बार चलता रहा। उसके बाद बंदर को गुस्सा आ गया, उसने तलवार उठाई और उसको मारने का सोचा, पर मक्खी भाग गई और राजा की नाक कट गई। तो मोरल है कि हमें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। धन्यवाद।
2: नमस्ते, मेरा नाम लवजीत है, मैं क्लास सेकंड में पढ़ती हूँ। आज मैं एक प्यासे कौवे की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक दिन की बात है, एक कौवा उड़ रहा था, उसको बहुत प्यास लग रही थी। उसको एक मटका दिखा, उसमें पानी बहुत ही नीचे था। उसकी चतुराई लगाई, उनने उधर छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए देखे, तो उनने अपनी चोट से एक एक पत्थर उठाकर उस मटके में डाल दिया। पानी ऊपर आने लगा, पानी पीकर प्यास बुझा के चला गया। थैंक यू।
3: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंशु। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मेहनत का फल। एक दिन एक राजा अपने घोड़े के साथ महल में जा रहा था और बीच रास्ते में ही उसको किसान मिला। और राजा ने किसान से पूछा कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। तो किसान बोला कि मैं अपने पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो राजा को उसकी बात अच्छी लगी और उसने उधर ही उसको पुरस्कार दे दिया। फिर बाद में राजा ने कहा कि तुम कल मेरे महल में आना, मैं तुम्हें और पुरस्कार दूंगा। तो किसान बोला ठीक है। अगले दिन जब किसान राजा के महल में पहुंचा तो उसने उधर देखा कि राजा के पास अभी बहुत सारे लोग हैं, तो उसने इंतज़ार किया। जैसे ही राजा की नज़र किसान पे पड़ी तो उसने पूछा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया तुमको इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। तो किसान बोला कि नहीं, मैं अपनी फसल उगने के लिए इतना इंतज़ार करता हूँ, तो पुरस्कार के लिए क्यों नहीं। तो राजा को उसकी बात अच्छी लगी, तो उसने उधर ही उसको और पुरस्कार दे दिए। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। धन्यवाद।
4: मेरा नाम ऋषभ और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में दो लड़के रहते थे, एक का नाम रामू दूसरे का नाम शामू। जो रामू था वो बहुत लोभी था और जो शामू था वो ईर्ष्या भाव रखने वाला था। दोनों ने एक ही देवी की पूजा की। देवी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, पर मेरी एक शर्त है कि जो पहले मांगेगा उसे तो मिलेगा पर दूसरे वाले को दुगना मिलेगा। अब दोनों चुप। थोड़ी देर के बाद देवी बोली, लगता है तुम दोनों को कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। शामू बोला, नहीं मुझे कुछ चाहिए, मेरी एक आँख फोड़ दो और मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोद दो। शामू देवी के पैरों में गिर के बोला, नहीं ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, वरना तो मेरी दोनों आँख फूट जाएगी और मेरे घर के बाहर दो बड़े गड्ढे खुद जाएंगे। देवी बोली, तथास्तु, अब कुछ नहीं होने वाला। शिक्षा, हमको कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए और ना ही ईर्ष्या भाव रखना चाहिए किसी से।
2: धन्यवाद।
0: तो बच्चों सुनिए ना आपने छोटे छोटे बच्चों से कविताएं और कहानियां, मजा आया ना? तो फिर बजाओ ताली। और अब बच्चों बारी है आप सभी के जिज्ञासा के समाधान की, और इस जिज्ञासा के समाधान को लेकर आ रहे हैं आपके अपने दोस्त संस्कार कटारिया। तो जानते हैं आज की जिज्ञासा।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संस्कार कटारिया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी बारिश के बाद आसमान में सुंदर सा इंद्रधनुष देखा है? उसे देखकर मन कितना खुश हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो चलिए आज हम इसी मजेदार सवाल का जवाब जानेंगे। तो दोस्तों, जब बारिश होती है और उसके बाद सूरज निकलता है, तब सूरज की रोशनी पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती है। सूरज की रोशनी हमें सफेद दिखती है, लेकिन उसके अंदर 7 रंग छुपे होते हैं। जब ये रोशनी पानी की बूंदों से गुजरती है तो वो अलग अलग रंगों में बन जाती है। फिर आसमान में एक सुंदर सा इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। दोस्तों, इंद्रधनुष में एक प्यारी सी बात भी सिखाता है। अलग अलग रंग मिलकर एक खूबसूरत इंद्रधनुष बन जाता है। वैसे ही हम सब अलग हैं, लेकिन साथ मिलकर दुनिया को सुंदर बना देते हैं। एक बहुत प्यारी लाइन है, बारिश के बाद ही इंद्रधनुष आता है। उसका मतलब है कि मुश्किल के बाद खुशी जरूर आती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी इंद्रधनुष देखो, उसकी सुंदरता के साथ उसकी पीछे का साइंस भी याद रखना। धन्यवाद।
0: तो बच्चों, ये तो थी आज की जिज्ञासा। उम्मीद है आपकी जिज्ञासा इंद्रधनुष वाली पूरी हुई होगी। बच्चों बारी है आपसे विदा लेने की, और अब बच्चों हम आपको बता दें, इस प्यारे से कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही करते रहिए अच्छे अच्छे ढेर सारे काम। इसी बात के साथ फिर मिलने का वादा करते हुए बच्चों अनुमति दीजिए अपनी आराधना दीदी को। जय हिंद,
6: जय हिंद,
0: टाटा, बाय बाय, नमस्कार।
7: सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे बच्चे हमारे।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत। आज के कलाकार हैं संजय महाजन। आइए इनसे सुनते हैं ये मालवी लोकगीत।

लोक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संजय महाजन के गाए मालवी लोकगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण के गाए भजन।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, 10:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसमें आप कॉल करके अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं।

11 बजे से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन। राग है अलहिया बिलावल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित ब्रज नारायण का सरोद वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला की।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जांच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयां और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947,51,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगोआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों ने प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में ये संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जन हानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज

0: से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी भोपाल का
2: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं महिमा आपके साथ। और अगले 50 मिनट तक ये सुरों, गीतों और आपकी फरमाइश का खूबसूरत सफर जारी रहेगा। तो उठाइए फोन और अपना नाम और शहर बताइए, हमसे बात करिए और सुनिए अपने पसंद के गीत। हमारे फोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलें। लेते हैं पहला फोन कॉल। हेलो हेलो, MH हॉटलाइन प्रोग्राम, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
5: खूबसूरत सी जिंदगी में खुशियां आपके चेहरे पर बरकरार रहे जी। और मेरी दुआ है रब से कि आपको खुशियों का नहीं बल्कि खुशियों को आपका इंतजार रहे।
4: अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अपना नाम बताएं पहले, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं आपका नियमित श्रोता पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ। मैडम
4: मोहम्मद रफी मंसूर जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
5: मैडम गाने से पहले आज जो तंबाकू विश्व निषेध दिवस है
4: जी, हाँ,
5: तो उस पर दो शब्द कहना चाहूंगा।
4: विश्व तंबाकू दिवस है और आज हम अपने श्रोताओं से बिल्कुल इस विषय पर भी बातचीत करेंगे। बताएं क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से?
5: मैडम ये नशा किसी भी प्रकार का हो, चाहे तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, बीड़ी मदिरा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए
4: बहुत
5: हानिकारक होता है और इनसे कैंसर भी होता है और भी दूसरी कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो जो लोग इनका सेवन करते हैं तो कृपया ध्यान से सुने, इनसे दूर रहें और आज ही इन्हें त्यागने की कोशिश करें। और जो नहीं करते हैं और इन लोगों की संगत में रहते भी हैं तो संगत में अगर रह भी रहे तो अपने ऊपर इन चीजों को हावी ना होने दें और हो सके तो ऐसे लोगों की संगत से हमेशा दूर ही रहें।
4: दूर रहें क्योंकि संगत से ये चीजें जल्दी हो जाती हैं। तो
5: और ये चीजें हमारी मैडम हमेशा समाज में जो हमारी छवि को बिगाड़ती भी है।
4: हाँ बिल्कुल, आप सामाजिक छवि बिगड़ेगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, तन मन धन तीनों चीजों का नाश होगा। तो सबसे अच्छा है कि इन चीजों से अपन दूर रहें, दूरी बनाए रखें। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने अपने शब्दों के माध्यम से। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
5: गीत भी मैडम इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, ये फिल्म का नाम है ज्वालामुखी और गाने के बोले पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब।
4: अरे वाह, बहुत बढ़िया गीत आपने चुना है आज के इस मुकम्मल दिन पर। तो सुनवाएंगे आपको अपनी पसंद का ये गीत, तो चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: कहूंगा, फिर आपको भी आप नहीं बाप कहूंगा।
1: What?
0: ये जो कहे

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो MH हॉटलाइन। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: महिमा जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? नाम
1: बताइए। जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद।
0: शेख फहीम मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताएं कौन सा कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: दामन और आग फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के आवाज में, मुस्कुराती हुई एक उसमें की तस्वीर हो तुम।
0: बहुत खूबसूरत गीत है ये मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, साथ में आशा
1: और संजय खान अभिनीत फिल्म है।
0: हाँ हाँ, और बताएं क्या चल रहा है आजकल?
1: अभी जनगणना से फ्री हुए मैडम 30 तारीख को।
0: अच्छा हाँ,
1: आनंद ले रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: और अभी छुट्टी का हमको विशेष अवकाश दिया, 7 दिन का।
0: 7 दिन हुए हैं, 7 दिन का अवकाश मिला है।
1: एक जून था स्कूल, भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठन ने मांग की थी शासन से, तो कल ही आदेश जारी हुआ, 7 दिन के लिए अतिरिक्त अवकाश दिया।
0: बिल्कुल, तो इस अवकाश का पूरा लाभ उठा रहे हैं आप।
1: बिल्कुल, आप एक सप्ताह तक आप लोगों से जुड़े रहेंगे।
0: जुड़े रहिए, बिल्कुल रेडियो के साथ जुड़े रहिए। और विश्व तंबाकू दिवस पर आज क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: विश्व तंबाकू दिवस पर यही कहना चाहेंगे कि नशा बहुत बुरी चीज है, इससे शारीरिक और मानसिक दोनों
0: हानि होती है।
1: हानि होती है, और परिवार भी टूट जाते हैं। इसका सीधा ये है कि शासन इस पर रोक ही लगाते ना।
0: बहुत जरूरी है
1: एक बात पूरी।
0: हाँ, और जो जितने भी जो भी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य यही होता है ज्यादातर कि हम इन चीजों से अवगत हों।
1: बिल्कुल,
0: और जो चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं उनसे हमेशा के लिए दूरी बनाए रखें। जी, बहुत अच्छा संदेश दिया। तो चलिए इसी संदेश के साथ आपके पास पहुंच रहा है आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, MH हॉटलाइन प्रोग्राम।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार। मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, पुणे
0: श्रीपाल
1: महाराष्ट्र
0: जाखड़े जी। ओके, नमस्कार,
1: से।
0: बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: हाँ, मुझे अभिलाषा फिल्म का गाना सुनना है। वादिया मेरा दामन, रास्ते में मेरी बाहें, तुम कहाँ
0: कहाँ
1: जाओगे
0: जाओगे?
1: मेरे सिवा
0: हाँ,
1: जाओगे।
0: मजरू साहब का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है, SD बर्मन के संगीत निर्देशन में। बताएं जाखड़े साहब, आप क्या करते हैं वहाँ पर?
1: हाँ जी, हम यहाँ वृद्धाश्रम में रहते हैं मैडम जी।

0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: वृद्धाश्रम में रहते हैं,
1: इंदौर से रहने वाले हैं जैसे।
0: हाँ हाँ
1: जी,
0: तो बताएं कि किस तरह के, कैसा लगता है आपको वहाँ पर रह के, किस तरह से आप अपनी इच्छाओं को, क्या बोला जाए, मतलब बहुत मुश्किल होता है कि घर को छोड़कर ऐसी जगह पर रहना, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन जाती हैं?
1: हालात तो है, रहते हैं मैडम जी,
0: जी
1: अगर हालात ही पैदा होगा तो जाना ही पड़ता है, मतलब ऐसा तो कोई जाएगा नहीं।
0: हाँ, अपनी स्वेच्छा से तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा, लेकिन ऐसा क्यों, क्या परिस्थितियां बनी कि आपको इस तरह से वहां रहना पड़ा?
1: नहीं, असल में हमारे घर में कोई रहा ही नहीं, हम पहले ही इंदौर में ही रहे हैं, रहते थे
0: 35
1: साल रहे इंदौर में।
0: अच्छा,
1: तो ऐसे हालात हुए फिर, मतलब कोई रहा ही नहीं, माँ बाप चले गए, फिर भाई भी गया, चले गए, अकेले हो गए हम,
0: अच्छा,
1: इस वजह से फिर हमको आश्रम में जाना पड़ा, किसी का
0: हाँ
1: सहारा बन नहीं रहा, ऐसी बात हो गई।
0: हाँ मतलब कि एक के बाद एक दुखद परिस्थितियां आपके साथ बनती चली गई।
1: हाँ
0: और
1: जी, दुखद परिस्थितियां, और हम ब्लाइंड है एक्चुअली,
0: अच्छा
1: हिंदी
0: अच्छा
1: कहते हैं
0: ब्लाइंड
1: ब्लाइंड
0: है, तो आपकी सेवा
1: है।
0: अच्छे से होती है वहाँ पर?
1: हाँ जी, अच्छे से होती है, मतलब लोग अच्छे हैं उधर कंपेरेटिवली,
0: हाँ
1: तो ठीक है, मतलब पूरे शहर से 40-45 किलोमीटर दूर है आश्रम, जो ग्रामीण इलाका है,
0: हाँ अच्छा अच्छा
1: तो ये पहाड़ी भी है, आजू बाजू डैम है इधर, तो दूर है, बहुत दूर है। तो
0: तो कई सारे लोग साथी भी बन गए होंगे आपके नए नए वहां पर, और
1: हाँ है
0: एक
1: ना, साथ
0: परिवार
1: ही
0: जैसा
1: हाँ
0: हो जाता है वहां पर भी। तो बताएं कौन सा गीत सुन रहे हैं आज आप? अभिलाषा फिल्म का बताया ना आपने।
1: जी, बात चलो
0: हाँ,
1: हमें तो नहीं
0: तो
1: मिली,
0: आप अकेले
1: लेकिन
0: सुनते हैं कि सारे लोग मिलके सुनते हैं आश्रम में?
1: नहीं यार, हम तो अकेले सुनते हैं, हमारे इंदौर में मित्र है वो भी ब्लाइंड है, तो हमको फोन से गाना शुरुआत है,
0: अच्छा
1: यहाँ तो
0: अच्छा
1: आता नहीं है इंदौर। हाँ, इंदौर इधर आता नहीं है,
0: हाँ,
1: तो वो हमको अभी जब गाना चालू होगा तो वो हमको सुनाएंगे, मतलब
0: अच्छा
1: मोबाइल पर। हाँ जी,
0: हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, और आपकी पसंद भी बहुत अच्छी है,
1: चलो
0: बहुत पुराना गीत अच्छा चुना है आपने।
1: जी, एक निवेदन था मैडम जी, हमको गाना पूरा सुनवाई होगा, कारण हम बहुत दिनों में फोन करते हैं,
0: अच्छा
1: एक
0: अच्छा
1: महीने में फोन करते हैं। हाँ
0: हाँ, तो
1: जी
0: चलिए पूरा गीत सुनवाएंगे आपको आज इस कार्यक्रम में,
1: जी
0: आनंद लीजिए अपनी पसंद के गीत का।
1: जी

0: दिल से निकली फरमाइश और गीतों की मधुर पेशकश, यही है आपका अपना कार्यक्रम जहां आपकी आवाज़ है, आप ही के पसंद के गीत हैं और कार्यक्रम है हमारा MH हॉटलाइन। लेते हैं कार्यक्रम में अगला फोन कॉल। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं महेश बिलाला बात कर रहा हूँ, जिला अगर मालवा, ग्राम मनासा थी।
0: ग्राम
1: मनासा।
0: मनासा से?
1: जी दीदी।
0: हाँ बताएं, कौन सा कार्यक्रम में गीत सुनेंगे आज?
1: जी दीदी, आज करण अर्जुन पिक्चर का सुनवा देना, वो एक मुंडा मेरी उम्र का, एक मुंडा तेरी उम्र, देखो जी दिलों की ये बातें नहीं जानते।
0: अच्छा अच्छा ये गीत किसके लिए सुनना चाह रहे हैं? आपको पसंद है ये गीत?
1: दीदी दीदी बहुत पसंद, इस तरह का गीत हमें पसंद है और सभी श्रोताओं के लिए भी हम चाहते हैं कि उन्हें भी पसंद आएंगे।
0: बिल्कुल आएगा ये गीत, बहुत अच्छा चुना है आपने। और बताएं क्या करते हैं आप महेश जी?
1: जी दीदी, अपना खेती किसानी का काम है।
0: और साथ में रेडियो चलता है दिन भर?
1: साथ में रेडियो चलता रहता है, खेत पर जाते हैं तो मोबाइल पर चलता रहता है और घर पर रहते हैं तो रेडियो है बड़ा।
0: तो मनासा में कौन कौन साथी सुन रहे हैं इस वक्त आपके साथ?
1: दीदी अन्य साथी भी सुनते रहते हैं दीदी, जैसे कई लोग घर पे रहते हैं, घर पे हमने कई बार रेडियो के माध्यम से यानी मोबाइल के माध्यम से बताया कि ये सुन ऐसे ऐप होती है, उससे होता है डाउनलोड।
0: बिल्कुल, और आजकल तो ऐप पे सुनते हैं सभी, तो हर कोई कहीं से भी फोन लगाता है हमें पूरे हिंदुस्तान।
1: क्या है कि दीदी नए युवाओं को समझाना पड़ता है दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और आपके फोन से देखिए हवा की आवाज आ रही है, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है।
1: जी दीदी बिल्कुल, ठंडी ठंडी हवा,
0: ठंडी ठंडी हवा आ रही है,
1: अभी तो गर्मी पकड़ रही है दीदी।
0: बिल्कुल, तो मनासा में आपको पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम MH हॉटलाइन। फोन करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो हेलो
1: महिमा जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: धर्मपुरी जिला धार मध्य प्रदेश से मोहम्मद तस्लीम से बोलो। महिमा जी,
0: मोहम्मद तस्लीम शेख जी, बहुत बहुत नमस्कार, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज? हाँ जी,
1: बलिदान फिल्म का है, लता जी की आवाज में।
0: आपकी गानों की पसंद बहुत रेयर होती है
1: जी। हाँ, जी, और गाने बहुत खूबसूरत,
0: बहुत खूबसूरत गीत पसंद करते हैं आप। लता जी की आवाज में बलिदान फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं
1: जी।
0: बताइए धार का क्या हाल है, मौसम कैसा है वहाँ का?
1: गर्मी बहुत ज्यादा थी मैडम यहाँ पर, और रात को 3 बजे पानी गिरा तो थोड़ी राहत मिली गर्मी।
0: हाँ, अभी 2-3 दिन से मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आया है
1: जी जी,
0: और सुबह शाम तो कम से कम थोड़ी हल्की ठंडक हो गई है, हवाएं भी चल रही हैं
1: जी।
0: हाँ, तो आज बताएं विश्व तम्बाकू दिवस है, बताएं कौन सा संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: यही बोलूंगा कि तम्बाकू नहीं खाएं, सिगरेट बीड़ी सिगरेट वगैरह नहीं पी, इससे बहुत ज्यादा कैंसर हो रहे हैं।
0: हाँ, नशा बहुत हानिकारक,
1: यहाँ तक कि बीड़ी सिगरेट के खोके पे बड़े बड़े चित्र तक बना दिए और उनको इतनी महंगी कर दिए। ये मेरी किराना दुकान थी, जब पैकेट 8 रुपए में बिकता था, आज सिगरेट 15 रुपए की एक बिक रही है।
0: तो सोचिए हम अपने तन के साथ
1: भी पीना नहीं छोड़ते जी।
0: हाँ, धन का कितना नुकसान कर रहे हैं। तो हमारे सभी हाँ साथियों से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इस नशे से, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। सिर्फ एक नशा करिए संगीत का, और सुनते रहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, अपनी पसंद के गीत सुनिए।
1: पैसों का भी नुकसान और जान का खतरा भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपके लिए भेज रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, MH हॉटलाइन प्रोग्राम।
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार। कौन कौन सा बोल रहे?
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं श्रीपाल गोयल, बहादुरगढ़, हरियाणा से।
0: श्रीपाल गोयल जी हरियाणा से बोल रहे हैं?
1: यस मैम।
0: हाँ, नमस्कार। और बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में?
1: जी मैम, फिल्म आवारापन से है, मौला मौला।
0: आवारापन का मौला मौला गीत सुनेंगे आज
1: जी।
0: क्या क्या करते हैं आप वहाँ पर?
1: मैम दिल्ली में काम करते हैं, आज छुट्टी है, संडे है, तो
0: हाँ।
1: संडे ही आज तो।
0: अच्छा, तो आज आप अपने घर पे आए होंगे?
1: जी नहीं, हम डेली जाते आते हैं ट्रेन से।
0: अच्छा, डेली
1: अप
0: डाउन करते हैं।
1: जी।
0: और रेडियो इंदौर आकाशवाणी आप सुनते हैं बराबर?
1: हाँ मैम, न्यूज ऑन AIR ऐप सुनते रहते हैं।
0: हाँ, AIR ऐप पे तो हमारे बहुत सारे नए श्रोता जुड़ते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि बहुत दूर दूर से हमारे साथ हमारे कई साथी जुड़ते हैं नए नए। तो और कौन से कार्यक्रम सुनते हैं हमारे आकाशवाणी इंदौर के आप?
1: मैम आपका तो उम्मीद बात है, इंदौर में सुनते रहते हैं, और जो आपके यहाँ से मतलब टेलीकास्ट होते हैं, सभी डेली होते हैं, सभी सुनते हैं।
0: तो बहुत सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और भी कोई सुनता है घर में?
1: नहीं मैम, घर में किसी को शौक नहीं है इतना, मुझे शौक है।
0: अच्छा, तो सिर्फ आप अपने मोबाइल ऐप पे सुनते हैं?
1: जी।
0: तो श्रीपाल जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते महिमा जी।
0: नमस्ते, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं जाना पहचाना श्रोता अनिल भंडारे।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज से लग गया था कि अनिल भंडारे जी बोल रहे हैं। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: कल नरगिस का जन्मदिन है 1 तारीख को।
0: हाँ हाँ,
1: उसकी उसको नव याद करते हुए फिल्म अदालत के गजल सुनना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, पुराने गीतकार संगीतकारों की जितनी नॉलेज आपको है, हमारे कई सारे श्रोताओं को है, लेकिन आप भी उसमें से एक हैं जो बहुत सारी अच्छी नॉलेज अपने साथ हमेशा रखते हैं और हम लोगों के साथ साझा करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है।
1: इसका संगीत मदन मोहन का है, राजन कृष्ण का गीत लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत गजल है।
1: कुछ दिल दिल से बात कही और रो लिए, यूं हसरतों के दा।
0: जी हाँ, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में बेहद खूबसूरत गजल है ये, अदालत फिल्म से। हाँ, और उसे गाया भी उतना ही शिद्दत से है लता जी ने।
1: बहुत ज्यादा गाया,
0: बहुत बढ़िया गाया।
1: लता की आवाज नरगिस पे इतना फिट हुआ, ये उस जमाने में गाना
0: सुपर हिट हुआ,
1: लोकप्रिय हो गया था। अदालत के सभी गाने लोकप्रिय, एक और गाना हमको सिखाया कि हम कुछ नहीं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत गजलें मदन मोहन साहब ने अदालत फिल्म में दी हैं। जी हाँ,
1: आज भी अच्छा लगता है। 7 साल हो गए, अच्छा लगता है कि गीत जैसे कल का ही है। पुराने गीत कभी नहीं होते।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत हमेशा अजर अमर रहेंगे। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद पर कार्यक्रम का।
1: कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड,
0: ओल्ड इज गोल्ड। जैसे आप हमारे श्रोता हैं ओल्ड इज गोल्ड, उसी तरह ये गीत भी ओल्ड इज गोल्ड। चलिए, आपके लिए भेज रहे हैं ये प्यारा सा गीत अदालत फिल्म से। फोन करने के लिए

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। हेलो, अगले श्रोता कौन है?
1: जी, मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी नमस्कार।
0: अरविंद अग्रवाल जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी श्रीनगर जिला महोबा।
0: श्रीनगर महोबा से बोल रहे हैं
1: जी।
0: स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में हम आपका। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: जी आज की फिल्म का नाम रहेगा जवाब हम देंगे।
0: जवाब हम देंगे, कौन सा गीत सुनेंगे इसका?
1: तेरी आंख मस्तानी है।
0: अच्छा अच्छा, और बताएं क्या चल रहा है आजकल महोबा में, मौसम कैसा है वहाँ का?
1: अब फिर से गर्मी बढ़ने लगी है, अभी दो एक दिन कम हो गई थी।
0: हाँ,
1: पानी
0: हाँ, बारिश होने से, आंधी तूफान आने से थोड़ी हल्का तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन फिर वैसे ही मौसम हो रहा है।
1: 40 के ऊपर पहुंचने लगा टेम्परेचर।
0: जी हाँ, आज विश्व तम्बाकू दिवस भी है, तो कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: जी नशा निश्चित नाश है, इससे बचना चाहिए, अपना अपना करें सुधार। बाकी सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है, नशा मुक्ति केंद्र चला रही है, कहीं कोई बहुत सी चीजें हैं, विज्ञापन डालते हैं।
0: हाँ।
1: तम्बाकू के पैकेट में कैंसर का मरीज बना देते हैं, सिगरेट में बना देते हैं, लेकिन मानते नहीं है।
0: मतलब
1: तो अपने अपना कर सकते सुधार।
0: हाँ, शासन तो देखिए अपने प्रयास करती ही रहती है, सरकार चाहेगी कि कोई भी इस तरह का नशा ना करे, नशे से हमेशा दूर रहें, लेकिन हम लोगों को भी सोचना चाहिए, आम जन को सोचना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो हमारे तन का नाश कर रही हैं, मन का भी और धन का भी, तो कम से कम इन चीज़ों से हम दूर रहें इस नशे से।
1: बिल्कुल, कोशिश तो यही रहनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो चलिए आपका संदेश पहुंचा हमारे श्रोताओं तक, और अब गीत पहुंच रहा है आपकी पसंद का श्रोताओं तक। सुनिए,
1: आपका दिन शुभ हो।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। लगातार हमारे श्रोता हमसे जुड़ते जा रहे हैं अपनी पसंद के गीत के साथ। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो हेलो, आकाशवाणी इंदौर MH हॉटलाइन प्रोग्राम।
1: कली से फूल बनने में कितना वक्त लगता है, लहरों को किनारे से मिलने में कितना वक्त लगता है, मोबाइल है तो लगा दिया फोन, बात कर लो ना, बात करने में कितना वक्त लगता है।
0: बिल्कुल, नमस्कार जी, बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। देखिए फोन की घंटी, फटाफट फोन नंबर्स डायल करिए और बात हो जाती है, टाइम तो लगता ही नहीं। और पसंद का गीत सुनने में भी अब तो टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है MH हॉटलाइन के, आपकी बात के साथ ही हम आपका गीत आप तक पहुंचाते हैं, है ना। तो कौन सा बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मिसरपुर जिला धार से संदीप प्रजापत बोल रहा दीदी।
0: धार से संदीप प्रजापत जी, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: दीदी फिल्म का नाम है थानेदार और गाने के बोल है और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: वाह वाह,
1: थाने कुछ पा लिया एक तुझे पाके, बेचैन दिल को करार मिला।
0: बहुत अच्छा गीत है थानेदार फिल्म का। किसके लिए सुनना चाहते हैं ये गीत आप?
1: ये दीदी मेरी वाइफ मेरे को डेडिकेट करना चाहती है।
0: अच्छा, वाइफ की तरफ से आपके लिए ये गीत है?
1: जी दीदी बिल्कुल।
0: तो उनको बात करना चाहिए था हमारे इस कार्यक्रम में आज।
1: जी दीदी,
0: डेडिकेट वो कर रही हैं तो बात उनको करना चाहिए था कि ये गीत मैं अपने पति के लिए डेडिकेट कर रही हूँ।
1: जी दीदी, वो क्या है कि कल सुबह सुबह 2:30 बजे हमारे निसरपुर में बारिश हुई आंधी के साथ।
0: हाँ हाँ,
1: तो थोड़ा काम ईंटों का थोड़ा रंग अलग हो गया दीदी, गिर गई है। तो वो क्या है थोड़ी उधर जमा
0: बिजी हो गए,
1: टाइम निकाल के फोन लगा रहा था इधर।
0: कोई बात नहीं, चलिए आपने किया उनके लिए या उन्होंने किया आपके लिए, बात एक ही है, है ना
1: जी।
0: तो कार्यक्रम में आपका फोन लगा, फोन लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम में ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। इसी तरह का प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए महिमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हेलो MH हॉटलाइन।
1: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
3: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले, आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: पर्सनल लोन ऑफर
9: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
8: फ्री ट्रिप टू दुबई
9: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
10: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
9: तो क्या करूं?
10: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
9: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
10: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
12: नमस्कार सर। नमस्कार।
13: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका, मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
12: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
2: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
12: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
2: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
12: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
2: अनिमेश जी
7: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं, तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है तो वहां अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
2: अच्छा देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
7: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए तो वहां भी हम दोनों रूममेट थे तो हम दोनों वहां भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
2: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
12: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा मैं इससे फास्ट भागूंगा।
2: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
12: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप

रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी
1400-1500

500 साल पुराने ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें
डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही
चेन्नई के पहले हिंदू

इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। नेपाल बैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इसी गीत को सुनना चाहा था। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सिलसिला से। स्वर हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है शिवहरी ने।

इस गीत को सुनना चाहा था कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा था शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुर्बानी से। आवाज़ें कंचन, मनहर उदास और आनंद की। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर मीका, जयतेक बिरक और मीका बिरक ने

0: कुर्बानी फिल्म के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: दादा ये कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
5: हाँ हाँ क्यों नहीं,
6: अंगवा की दार पे जी।
4: और झूलते झूलते सुनते हैं
7: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: अरे दीदी धीरे धीरे।
8: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
9: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
10: आकाशवाणी इंदौर।
9: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
11: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
12: क्या?
11: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
12: वो कैसे?
11: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
12: पर सुनेंगे कैसे?
11: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
13: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकिया। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना मुश्ताक सायरा को लिए बिना वापस लौट जाता है। फजी मुश्ताक से सायरा को ना लाने की वजह पूछती है। कुछ दिनों बाद लोगों की कानाफूसी सुनकर वो मुश्ताक को दोबारा भेजती है। और अब आगे।

0: अरे फाता, करीम ने खबर भेजी है कि सारे को भेज दूं।
1: सारे को भेज दूं? वो क्या बोझ है हम पर? भेज दूं? अरे सारे को बुलाना ही है तो खुद आते या मुश्ताक को ही भेजते?
0: फाता, तुम हर बात उल्टी ही क्यों लेती हो? सारे उनकी बहू है और उन्होंने मुश्ताक को भी भेजने की बात कही है। मुश्ताक आए तो सारे को भेज देना।
2: सलाम अब्बू।
0: अरे अरे आओ बेटा, आओ, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी।
2: सलाम अब्बी।
0: सलाम, खुदा सलामत रखे। फाता, सारे को बोल चाय बना लाए।
1: बोलती हूँ।
2: आपको अब्बू का पैगाम तो मिल गया होगा?
0: हाँ बेटा, हाँ, मिल गया, और अभी उसी पर बात हो रही थी।
2: अच्छा,
0: इशारे को कैसे भेजा जाए। अब तुम आ ही गए हो तो साथ ही लेते जाना।
1: कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अभी ऐसी भी क्या जल्दी है कि सारे को ले जाओगे? कुछ दिन मायके में रहती तो उसे भी थोड़ा आराम हो जाता। वहां जाकर तो गृहस्थी की चक्की में पिसना ही है।
0: फाता, सारे को बोल तैयार हो जाए।
1: अरे मुश्ताक पहले सारे से तो मिल ले, फिर जाने की बात तो हो ही जाएगी।

0: लीजिए, चाय लीजिए।
1: सारे, तुम ठीक हो?
0: हाँ ठीक हूँ।
1: तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है।
0: मुझे मुझे आपसे बात करनी है।
1: क्या?
0: मेरी बात को जरा आराम से सुनना होगा।
1: अरे पहले बात तो कहो।
0: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
1: क्या मेरे साथ नहीं जा सकती? पर क्यों?
0: अब मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं।
1: उस घर में नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मुश्ताक, हमारी उम्र ही कितनी है कि मैं अपने को घर गृहस्थी में झोंक दूं?
1: सारे, घर गृहस्थी संभालने को तुम एक भार समझ रही हो? हमारा घर ही कितना बड़ा है, चार लोगों का परिवार है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं?
0: मुश्ताक, मैं परिवार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन अपना परिवार हो ना।
1: अपना परिवार? तो क्या वो हमारा परिवार नहीं है जिसमें हम रहते हैं?
0: परिवार तो मियां बीबी से बनता है मुश्ताक।
1: सारे, तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है?
0: देखो, अगर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी।
1: सारे, बात मानने या ना मानने की नहीं है, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है।
0: इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते।
1: सारे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
0: तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? हम एक अलग घर में प्यार से रहेंगे मुश्ताक।
1: सारे, क्या हम उस घर में प्यार से नहीं रहते? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम ये कैसे सोच सकती हो?
0: मुश्ताक, मैं कुछ और नहीं जानती, तुम्हें अलग घर लेकर रहना ही होगा।
1: सारे, ये जिद गलत है। तुम शायद परिवार की अहमियत को नहीं समझती, और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा भी होती है और परिवार उसका आधार होता है।
0: मैं अपना परिवार चाहती हूँ मुश्ताक, सिर्फ मैं और तुम, बस।
1: सारे, तुम्हें उस घर में क्या मेरे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते?
0: करते होंगे, पर मैं अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी मुश्ताक।
1: तुम समझने की कोशिश करो।
0: मैं बस इतना जानती हूँ मुश्ताक कि अगर तुम अलग घर लेकर रहने को तैयार हो तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, नहीं तो।
1: सारे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूँ? मेरे अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी मुझ पर है और ऐसा करना मुझे किसी भी सूरत में पसंद नहीं।
0: तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं?
1: सारे, क्या कि अम्मी अब्बू को संभालना अपने जीवन को नष्ट करना होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये ख्याल तुम्हारे जहन में आ भी कैसे सकता है?
0: मुश्ताक, मैं तुमसे बहस नहीं करती। तुम अपने अम्मी अब्बू को कहां कैसे रखते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और एक बात और सुन लो कि जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू उस घर में हैं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
1: सारे, ये तुम नहीं कह रही, मेरी सारे ऐसी नहीं जो परिवार को ठुकरा दे, मुझे अपनों से अलग कर दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती कि मैं उन अम्मी अब्बू को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अपने अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने को मेरी सारा नहीं कह सकती। वो मुझसे प्यार करती थी।
0: मुश्ताक, सारे आज भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
1: सारे, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं?
0: अगर तुम

0: मुझसे प्यार करते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर नहीं रुक सकते थे क्या? पर तुम नहीं रुके और अब भी तुम मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
1: सारे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
0: तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर रुक सकते थे, पर तुम नहीं रुके और तुम अब भी मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते।
1: सारे समझने की कोशिश करो।
0: तुम्हें बताना होगा मुश्ताक कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं।
1: सारे

0: अरे कुछ बताएगी भी, अरे बोल तो सही।
1: हाय हाय, मार डाला मेरी फूल सी बच्ची को। अरे सुनो रे लोगों सुनो, मार डाला मार डाला।
2: अरे ओ फाता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
1: मेरी फूल सी बच्ची।
2: अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
1: मार डाला मार डाला।
2: किसको मार डाला, किसने मार डाला?
1: हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
2: साफ साफ बता कि हुआ क्या है।
1: सारे, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ सारे को?
1: हाय भाग फूट गए उसके, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ उसे?
1: सारे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं क्या जानती थी कि मेरे भाई का लड़का ऐसा निकलेगा, मेरे ही सारा को मारा।
2: सारे को मारा?
1: हाय या अल्लाह।
2: लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना?
1: अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों से सारे यहीं रह रही थी। मेरे बीमार होने पे आई थी, सो मुश्ताक को पसंद नहीं था।
2: अरे फाता, ऐसा भी क्या कि कोई इस बात के लिए अपनी ही बीवी को मारे?
1: अरे मर्दों का क्या है, वो तो चाहता ही है कि औरत उसके गुलाम बन कर रहे।
2: सुना है कि मुश्ताक इससे पहले भी सारे को लेने आया था।
1: अरे इसीलिए तो नाराज हो गया और सारे को मार बैठा होगा।
2: लेकिन मुश्ताक तो सारे के अपने मामा का लड़का है, फिर भी ऐसा व्यवहार, छी छी।
1: अरे औरत मर्द का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ हर रिश्ता खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई अपनी पत्नी को इस तरह मारे।
2: सारे कहाँ है?
1: अपने कमरे में रो रही है मेरी बच्ची, उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। हाय अब नहीं भेजूंगी उसे। हाय जो मेरी बच्ची को मेरे सामने मार सकता, वो मेरे पीछे उसके साथ कैसा बर्ताव करता होगा। जीते जी मर गई।
2: फाता, तू अपने भाई करीम को तो समझा ही सकती है कि मुश्ताक पर लगाम रखे। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, ये तो अच्छी बात नहीं।
1: अपने भाई से क्या बात करूं, उसे तो आराम ही है। एक नौकरानी मिल गई है जो सारा काम घर का करती है। नौकरानी की तरह हो गई है मेरी बच्ची वहां जाकर। अब मैं अपनी बच्ची को उस जालिम के साथ नहीं भेजूंगी।
2: लेकिन मुश्ताक मानेगा?
1: मानेगा नहीं तो क्या, अपनी बच्ची को मर

0: बात क्या करना, वो तो चाहेंगे ही कि सारे वहां आ जाए। उन्हें तो एक नौकरानी चाहिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
1: अब चलो री, बहुत देर हो गई है।
2: हाँ,
1: चलो चलो चलो चलते हैं।

0: पाता
1: आ गए।
0: पाता, ये औरतें क्या बातें करते हुए जा रही थी?
1: अरे वही बातें करेंगी ना जो देखा है उन्होंने।
0: आखिर हुआ क्या है?
1: अरे मुश्ताक ने सारे को मेरे सामने जालिमों की तरह मारा।
0: फाता, तू ये क्या कह रही है? मुश्ताक ने सारे को मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
1: अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मुश्ताक को सारे को मारते हुए।
0: कहीं कुछ गलती हुई है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और इस बात को यही खत्म करना चाहिए।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती।
0: अरे इस बात को फैलने से हमारी बदनामी ही होगी।
1: या खुदा, अब बदनामी क्या होगी? सारे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
0: ओफो, तुमसे बात करना भी? सारे कहाँ है?
1: अरे रो रो कर बुरा हाल है बेचारी का। जिसका पति इतना निर्दयी हो उसका क्या होगा? हाय रे मेरे बच्चे।
0: अरे फाता, अब तू चुप कर। तू इस बात को क्यों बढ़ा रही है? ये ठीक नहीं है। इससे उनके जीवन में दुख ही बढ़ेगा।
1: तुम चुप करो जी, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं खूब समझती हूँ। सारे मेरी बच्ची है और उसके सुख दुख को तुमसे ज्यादा मैं समझती हूँ।
0: फाता, तू जो कर रही है वो सारे को कभी खुशी नहीं दे सकता। तू इस तरह से शोर मचा कर उनके जीवन में समस्या को ही बढ़ाएगी। अरे हमें दोनों से बात करनी चाहिए जिससे इस बात को यहीं खत्म किया जा सके।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानबूझकर मैं अपनी बच्ची को उस मुश्ताक के साथ अब नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
0: फाता, तू बात को बढ़ा रही है, ये ठीक नहीं है। हमें इस बात को सुलझाना है ना कि।
1: चुप करो, चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा मैं ही करूंगी। तुम्हें बीच में बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है।
0: या अल्लाह,

0: सारे मेरी बच्ची इस तरह क्यों बैठी है?
1: अम्मी अम्मी, ये तूने अच्छा नहीं किया।
0: अरे सारे, तू कह रही है कि मैंने अच्छा नहीं किया? अरे मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया है।
1: अम्मी ये ठीक नहीं हुआ है, ये घर की बात थी अम्मी, मेरे और मुश्ताक के बीच की बात थी, और तुमने तुमने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया।
0: अरे सारे तू नहीं जानती, ये मर्द ऐसे मुट्ठी में नहीं आते। अब देख मैं कैसे उसे ठीक करती हूँ।
1: अम्मी तू हमें हमारे हाल पर छोड़।

0: तू क्या समझती है मैं तेरी दुश्मन हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भले के लिए कर रही हूँ।
1: अम्मी, इससे ना तो मेरा भला हो सकता है और ना ही किसी और का। इससे सिर्फ बदनामी और बर्बादी हो सकती है। अम्मी,
0: सारे सारे तू अभी बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती। और सुन ले, मैं जो कर रही हूँ तेरे भले के लिए कर रही हूँ बेटी।
1: आज जो हुआ है उससे किसका भला होगा अम्मी? और ये सब तुमने ही कहा था करने को।
0: अच्छा ही हुआ कि जल्द उस जालिम की असलियत का पता चल गया, जो मेरे सामने, एक माँ के सामने उसकी बच्ची को मारे, वो पीछे क्या कुछ नहीं कर सकता है।
1: अम्मी बस भी करो, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
0: ये सब क्या मुझे अच्छा लग रहा है? मुझे भी दुख है, तू मेरी बेटी है और मेरे सामने तुझे कोई मारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोल, तू ही बोल, ये अच्छा लग सकता है क्या?
1: मुश्ताक मेरा शौहर है अम्मी, और मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर एक परिवार में ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुश्ताक ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
0: चुप कर तू, मैंने देख लिया अपनी आंखों से कि मुश्ताक कैसे प्रेम करता है। और अगर उसका प्रेम ऐसा ही है तो तुम्हें उसके पास दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्ताक और मुश्ताक जैसे मर्द औरत को सिर्फ घर की नौकरानी बनाकर रख सकते हैं, मार सकते हैं। और छी
1: अम्मी, तू नाहक परेशान मत हो, इस बात को यही खत्म कर दे, सब ठीक हो जाएगा अम्मी।
0: अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें नौकरानी सा काम करने और मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। देर से ही सही, मुश्ताक का असली चेहरा तो सामने आ ही गया, और उस करीम और फजी की नीयत का भी, जो तुझे महज एक औरत के रूप में नौकरानी समझते रहे हैं और उससे भी बदतर व्यवहार करते रहे हैं। अब देखना, मैं उन्हें बता दूंगी कि फाता की बेटी को दुख देने का मतलब क्या होता है। अगर मैंने उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं।
1: अम्मी, अब तू कुछ नहीं करेगी, जो तूने कर दिया वही बहुत है, और उससे जो कुछ भी हुआ उसे मैं कबूल कर लूंगी। अब और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी।
0: अब तू मुझे समझाएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं तेरी दुश्मन हूं बेटी? तेरी माँ हूं मैं, जो कुछ भी करूंगी तेरे भले के लिए ही करूंगी। और मैं उन्हें समझा दूंगी कि औरत पर जुल्म करना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे।
1: अम्मी, तू अब कुछ भी नहीं करेगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तू इतना तूल दे रही है। एक परिवार में ऐसा होता ही रहता है अम्मी, हमें इसे संभालना है, ना कि बिगाड़ना। मैं बात करूंगी मुश्ताक से।
0: अब तू उस जालिम से नहीं मिलेगी
1: अम्मी,
0: और तुझे संभालना होता कब का संभाल चुकी होती। और इतने दिनों में मुश्ताक तेरी मुट्ठी में होता, जैसे खजरी अपने शौहर को अपने इशारों पर रखती है। तुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो मैं करूंगी। और इस बीच में तुम्हें बोलने या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकिया की पांचवी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप

प्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे हरीश, लोकेश, सुप्रिया, नीलम और अंशु। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 134वें संस्करण में कहा कि नीदरलैंड में विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई हैं और यह ऐसा क्षण था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुजालपुर में आज से कॉलेज चलो अभियान एवं महाविद्यालय में प्रवेश का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अहिल्याबाई का जीवन सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अनुकरणीय आदर्श है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस महीने की 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एप्लीकेशन के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। और आईपीएल क्रिकेट में फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

महिला सभा सुन रही सभी सखियों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ ठंडा ठंडा। बहनों, कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे धूम्र

पान निषेध दिवस पर आज 31 मई को पूरा विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए धूम्रपान से दूरी बनाना कितना आवश्यक है। आज आधुनिकता भरी जीवन शैली में कई लोग तनाव और दिखावे के कारण धूम्रपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शुरुआत अक्सर शौक से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत का रूप ले लेती है। यह लत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। बहनों, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग इस लत की वजह से असमय मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि आज युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। कई बार लोग इसे आधुनिकता और व्यक्तित्व का प्रतीक मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धूम्रपान व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य तीनों को कमजोर करता है। सखियों, धूम्रपान का प्रभाव केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। घर परिवार के सदस्य, छोटे बच्चे और आसपास के लोग भी इस धुएं से प्रभावित होते हैं। इसे हम निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इससे बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां और महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की भी है। यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो वह इस आदत को छोड़ सकता है। परिवार का सहयोग, सकारात्मक वातावरण, योग, व्यायाम और अच्छी दिनचर्या व्यक्ति को नशे से दूर रखने में सहायक बनते हैं। हम बहनें भी कोशिश करें कि हमारे परिवार में आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हम भी इस मुहिम में उनका साथ अवश्य निभाएं। सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। माता पिता हमारे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। वे केवल हमें जन्म ही नहीं देते बल्कि अपने अथक परिश्रम, स्नेह और मार्गदर्शन से हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। एक बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक। वे हमें चलना, बोलना, अच्छे संस्कार अपनाना और जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। सखियों, प्रत्येक वर्ष 1 जून को पूरे विश्व में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। यह दिन उन महान आत्माओं को सम्मान देने का अवसर है जिनके प्रेम, त्याग, संघर्ष और संस्कारों से हमारा जीवन संवरता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ममता, करुणा और स्नेह का अथाह सागर होती है। वह स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयास करती है। बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी माँ को बेचैन कर देती है। उसकी दुआओं में हमेशा अपने बच्चों का सुख और सफलता ही शामिल होता है। वही पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं जो अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे रहते हैं। पिता का प्रेम अक्सर कठोर अनुशासन और जिम्मेदारियों के पीछे छिपा होता है, लेकिन उनका हर संघर्ष अपने परिवार की खुशियों के लिए ही होता है। माता पिता का जीवन त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। सखियों, आज के समय में व्यस्त दिनचर्या, मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। वृद्धावस्था में माता पिता को सबसे अधिक आवश्यकता अपने बच्चों के साथ सम्मान और अपनत्व की होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। बहनों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन लोगों ने हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है।
हमें हमेशा

संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि जीवन में सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माता पिता का आशीर्वाद उससे कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

बहनों, अब बात करते हैं 1 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस की। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व, स्वास्थ्य लाभ और मानव जीवन में उसके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से लेकर बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती तक दूध हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दूध का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही दूध और दुग्ध उत्पाद हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हमारे पर्व त्योहारों, पूजा पाठ और पारंपरिक व्यंजनों में भी दूध का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहनों, दूध केवल पोषण का स्रोत ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल है। लाखों किसान और पशुपालक दुग्ध उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। दुग्ध व्यवसाय ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आज के समय में बच्चों में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। ऐसे में दूध और उससे बने पौष्टिक पदार्थों को दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक हो गया है। दूध शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन उचित मात्रा में दूध का सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं तथा शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। दूध से बने दही, पनीर, छाछ और घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सखियों, दूध स्वास्थ्य का आधार है। यदि प्रतिदिन संतुलित मात्रा में दूध का सेवन किया जाए तो शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहता है। इसलिए हमें अपने दैनिक भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थों को अवश्य शामिल करना चाहिए। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बढ़ते तापमान की। ग्रीष्म ऋतु अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आती है और इस समय तो सबसे ज्यादा गर्म दिन 9 तपा चल रहे हैं। इस मौसम में यदि सावधानी न रखी जाए तो शरीर में पानी की कमी, थकान, लू लगना और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का रस शरीर को ठंडा

प्रदान करते हैं। अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए और हल्का पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फल शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो इनका सेवन भी हमको करते रहना चाहिए। गर्मी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी भोजन और खुले में रखी खाद्य सामग्री से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने से बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। उन्हें समय समय पर पानी पिलाना चाहिए और अत्यधिक गर्म वातावरण से बचाना चाहिए। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यदि हम थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाएं, तो ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हुए स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। सखियों, ये बात तो हुई गर्मी के मौसम में हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, और अब चलते हैं उन 7 बातों की तरफ, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातें यानी 7 वचन की तरफ। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में 7 महत्वपूर्ण बातें कही। यह बातें उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में की थी। सर्वप्रथम, 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना आयात करने वाले देशों में है। सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदा जाता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना। दूसरी बात, विदेश यात्रा ना करें। विदेश यात्रा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अभी आपको पर्यटन पर जाना है तो भारत में कई ऐसी सुंदर सुंदर जगह हैं, आप वहाँ जा सकती हैं। पेट्रोल डीजल की बचत करें। भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। कहीं जाना है तो एक दूसरे के साथ एक गाड़ी पर जाएं। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं। विदेशी वस्तुओं की जगह भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। स्वास्थ्य और आयात दोनों कारणों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक खेती और ईवी को बढ़ावा दें। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही गई। कोविड काल की तरह जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स अपनाने की बात कही गई, ताकि ईंधन की बचत हो सके। देशवासी इन 7 बातों यानी इन 7 वचनों का पालन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रह सकते हैं। तो हम सबको भी कोशिश करनी है कि हम इन 7 वचनों का पालन करें।

सखियों, गर्मी की तपती दोपहर में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो कितनी राहत महसूस होती है। आज खाना खजाना में हम लाए हैं आपके लिए गोंद कतीरे का शरबत बनाने की विधि। वैसे तो यह हमारे दादी नानी के समय से बनता चला आ रहा है, पर इस समय यह काफी ट्रेंड में है। तो चलिए नोट कीजिए गोंद कतीरा शरबत में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए गोंद कतीरा 2 छोटे चम्मच, ठंडा दूध 1 गिलास, चीनी या मिश्री स्वादानुसार, गुलाब का शरबत 1 बड़ा चम्मच, बर्फ के टुकड़े, इलायची पाउडर थोड़ा सा। शरबत बनाने के लिए रात भर गोंद कतीरा को पानी में भिगो दें, सुबह तक यह फूलकर जेली जैसा हो जाएगा। अब 1 गिलास ठंडा दूध लें, उसमें चीनी या मिश्री मिला लें। भीगा हुआ गोंद कतीरा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें गुलाब शरबत, इलायची पाउडर और साथ ही बर्फ के टुकड़े डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा गोंद कतीरा शरबत बनकर तैयार है। बहनों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू और गर्मी से बचाता है, पेट की जलन कम करता है। सखियों, गर्मी की दोपहर ज्यादा बड़ी होती है। इस समय दोपहर का भोजन करने के बाद 3 से 4 बजे तक हल्की भूख लगने लगती है, तो उसके लिए कुछ ठंडा चटपटा खाने का मन करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं चटपटे मूंग दाल के पानी पड़े। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल धुली वाली 1 कप, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, हींग चाहिए 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और साथ ही चाहिए थोड़ा तेल पकौड़े तलने के लिए। और चटपटे पानी के लिए हमें चाहिए पानी 1 लीटर ठंडा, पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, हरा धनिया थोड़ा सा, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर और साथ ही चाहिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और सादा नमक। सबसे पहले मूंग दाल बड़ों को बनाने के लिए जो दाल हमने

0: ली है, आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अब उसको धो लें अच्छे से, उसका पानी निकाल दें और मिक्सर में इसको पीस लें। इसका हमें बारीक पेस्ट तैयार नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। अब इसमें आप हींग, हरी मिर्च और नमक मिला लें और अब इस घोल को 2 मिनट अच्छे से फेंट लें ताकि यह हल्का और फूला हुआ हो जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और छोटे छोटे पकौड़े सुनहरे होने तक सेक लें। अब इसका पानी तैयार कर लें। एक बर्तन में ठंडा पानी लें, इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और बाकी सब मसाले मिला लें। अब इस पानी में जो हमने बड़े सेके थे उनको डाल दें। इनको 15 से 20 मिनट आप इस पानी में भिगो कर रखें। अब यह सर्व करने के लिए तैयार हैं। तो इस गर्मी आप भी यह ठंडे चटपटे मूंग दाल के बड़े बनाइए और खाइए। सखियों, गर्मी में अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।
1: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु गीत से।

यादव और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार है संगीता राय।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा,
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या?
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: और सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सलिल चौधरी के संगीत से सजे गीत से। आवाज तलत महमूद की है और फिल्म है छाया।

0: फिल्म गंगा जमुना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ में शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के

अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरीय निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब। चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में

0: आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर

0: का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
1: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
3: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
3: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
3: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रूपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
3: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
4: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
4: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
3: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हुर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। नन्हे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की।

नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मुस्कान में। मैं हूं आपकी दोस्त विभूति। आज के हमारे कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी, एक मजेदार पहेली, देंगे आपको एक छोटा सा मैसेज और मिलेंगे अपने दो खास मेहमान बच्चों से भी। अंत में सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। तो चलिए शुरू करते हैं मुस्कान, प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ। बच्चों अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। बच्चों आज हम सुनाएंगे कहानी आलस बुरी बला है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आलसी बनने से रोकेगी। एक गांव में रहता था किशोर, एक बहुत आलसी लड़का। वो भैंसे चराने जाता लेकिन सो जाता। जब दूध बेचने जाता तो खूब बहाने बनाता।

0: सबसे कहता, भाग्य में जो होगा सो होगा, यही उसका मंत्र था। एक दिन उसके द्वार पर आए एक साधु, और साधु उससे बोले, बेटा मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूं, ये पत्थर लोहे को सोना बना देगा, मैं 8 दिन बाद वापस आऊंगा। किशोर खुशी से बोला, महाराज बहुत धन्यवाद। अगले दिन किशोर ने सोचा, मैं कल लोहा खरीद लूंगा, और सो गया। दूसरे दिन पत्नी ने उसे उठाया तो वो थोड़ा सा लोहा लेकर आया जो सोना बन गया। वो उस सोने को बाजार में बेच आया, लेकिन बोला, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, और फिर से सो गया। ऐसे करते करते तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां, छठवां, सातवां दिन भी बीत गया। किशोर सोते रहा। आखिरी दिन साधु आए और क्रोधित होकर बोले, पारस वापस करो। किशोर घबराते हुए बोला, महाराज अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है, थोड़ा सा समय और। साधु ने गुस्से में कहा, तू आलस का गुलाम है, तेरे जैसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। किशोर पछता कर रह गया। साधु पारस लेकर वापस चले गए। अब देर हो चुकी थी, आलस ने किशोर के सारे सपने चुरा लिए थे। तो बच्चों, आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।
1: बच्चों, इस कहानी में कितनी प्यारी सी सीख है कि छोटे काम भी बहुत बड़ा असर करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे मजेदार पहेली कोने की तरफ, जहां पर आज हम आपको सुनाएंगे एक पहेली जिसका आंसर देना होगा आपको। पहेली ये है कि मैं बिना पांव के चल सकता हूँ, बिना मुंह के बोल सकता हूँ, और बिना हाथ के चीजें हिला सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। बताओ मैं क्या हूँ? आंसर समझ में आया? कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर सोचिए और मैं देती हूँ एक छोटी सी हिंट। हिंट ये है कि जब मैं तेज होता हूँ तो पेड़ हिलते हैं, और जब मैं धीमा होता हूँ तो पत्तियाँ शांत रहती हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जवाब है हवा, या हवा का झोंका। हवा बिना पाँव के चलती है, बिना मुंह के लगता है कि बोल रही है, और पेड़ों को हिला देती है। अब सच बताइए, आपको उत्तर समझ में आया था या आपने सोचा था कुछ और? अब हम पढ़ते हैं हमारे संदेश की ओर। एक छोटी सी काइंडनेस। आप हर रोज कोशिश कीजिए कि किसी का काम थोड़ा सा आसान कर दें, किसी छोटे को अपने खेल में शामिल कर लें, या घर में किसी बड़े की मदद कर दें। रास्ते में गिरे हुए केले के छिलके को उठा दें, जिससे सफाई भी होगी और वो किसी को फिसलने से, गिरने से भी बचाएगा। ऐसी दया या काइंडनेस से आपका दिल बड़ा होता है और आपके होठों पर खिलती है मुस्कान। अब वक्त है हमारे मेहमानों से मिलने का। आज हम जहाँ हैं वहाँ हमारे आसपास नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलो इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या कर रहे हैं। हेलो बेटा।
2: हेलो।
1: आपका नाम क्या है?
2: स्वरा।
1: स्वरा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: 4th।
1: तो अभी आपके समर वैकेशंस चल रहे होंगे?
2: यस।
1: छुट्टियों के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको?
2: मुझे छुट्टियों के बारे में, एक मैं डांस क्लास जाती हूँ वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं और मैं उनके साथ खेल भी पाती हूँ। उस गली में कोई रहता ही नहीं है।
1: अच्छा, जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई नहीं रहता है ना? और जो फ्रेंड्स मिलते हैं डांस क्लासेस में वो बहुत अच्छा लगता। तो सिर्फ डांस सीखते हो कि और भी मस्ती करते हो?
2: हम डांस भी सीखती हूँ मैं। मम्मा ने कुछ क्लासेस की बात करी है, पर वो इतने सारे चार्जेस ले लें अवेकस के लिए, ड्राइंग के लिए, तो मम्मा ना अब हमें
1: एक क्लास ज्वाइन कराई है।
2: हाँ,
1: क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना? थोड़े कम चार्ज लेना चाहिए ना उनको, जिससे बच्चे ढेर सारा सीख सकें।
2: हाँ।
1: तो अभी कितने गानों पर डांस सीखा है आपने?
2: अभी तो मैंने टोटल 5 सॉन्ग्स पर डांस सीखा है।
1: जो हमें करके दिखाना, जब हम बात कर ले उसके बाद मैं डांस दिखाओगे?
2: हाँ।
1: सिर्फ डांस पसंद है, गाना गाना भी पसंद है आपको?
2: थोड़ा थोड़ा पसंद है गाना गाना, वैसे तो डांस करना ही पसंद है।
1: ज़्यादा डांस करना पसंद है। और सबसे अच्छा कौन डांस करता है आपकी क्लास में?
2: सबसे अच्छा दीदी करती हैं।
1: सिखाने वाली?
2: वो वाली जो आती हैं क्लास में।

0: साथ सीखती हैं वो? तो क्या नाम है उन दीदी का?
1: उन दीदी का नाम है आराध्या।
0: आराध्या। और सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है आपकी इस डांस क्लास में?
1: सबसे अच्छी फ्रेंड अद्विका है।
0: वो भी डांस सीखती है कि वो कुछ और भी सीखती है?
1: वो डांस भी करती है और आर्ट क्लास भी जाती है।
0: अच्छा, छुट्टियों में सिर्फ ये हॉबी क्लासेस कर रहे हो, कुछ पढ़ाई हो रही है घर पे?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: कितनी?
1: थोड़ी सी। इसको पढ़ा देती हूँ मैं अपने भाई को।
0: अच्छा, तो बस उसी में आपकी पढ़ाई हो जाती है?
1: हाँ।
0: वेरी स्मार्ट। अच्छा, और भी कुछ घर पे कर रहे हो?
1: मैं घर पे स्केचिंग करती हूँ और ड्राइंग करती हूँ खुद से।
0: क्या बनाया आपने कल स्केच?
1: कल मैंने स्ट्रॉबेरी का स्केच बनाया।
0: स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी बहुत तो फायदेमंद है। आपको पसंद है खाने में स्ट्रॉबेरी?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: कौन सा फ्रूट पसंद है खाने में?
1: मुझे बनाना।
0: बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो बनाना शेक भी पीते हो या कैसे खाते हो?
1: सिंपल जैसे सब लोग खाते हैं,
0: उसको छिलका उतार के।
1: हाँ।
0: और केले का छिलका कहीं यहाँ वहाँ गिरा दिया है तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ये पता है आपको?
1: हाँ पता है।
0: किसी को गिराने की कोशिश तो नहीं करी?
1: नहीं।
0: तो छिलका कहाँ डालते हैं?
1: छिलका डस्टबिन में डालते हैं।
0: वेरी गुड। अच्छा, डांस क्लास का टाइम क्या? आज तो इतनी गर्मी भी हो रही है, तो कितने बजे जाते हो?
1: मेरा 8 बजे का बैच है।
0: मॉर्निंग?
1: मॉर्निंग।
0: और कितनी देर तक सीखते हैं?
1: मैं 10 बजे तक।
0: 10 बजे तक सीखते हो। तो कौन से गाने पे डांस करना सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, ज़रा गा के बताओ मैं।
1: घर मोरे परदेसिया।
0: थोड़ा गाना आता है? थोड़ा सा
1: नहीं।
0: कोई पोयम आती है? मेरी फेवरेट पोयम हमें सुना दो जो बच्चे सुन रहे हैं।
1: कौन सी?
0: जो भी आपको पसंद हो। हिंदी की कोई कविता सुना दो।
1: हिंदी की क्या सुनाऊँ?
0: हिंदी की कविता याद नहीं है?
1: नहीं है।
0: इंग्लिश की याद है?
1: इंग्लिश की मुझे, मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही।
0: तो कोई गाना ही सुना दो फिर।
1: गाना साईवा, साईवा नींदे मींदे आए ना, राती काटी जाए वह तेरे ही ख्याल।
0: अच्छा, तो आप नहीं गाना नहीं गा पा रहे हो। कोई जोक, कोई कहानी, कोई शायरी कुछ याद आ रही है तो सुना दो
1: मुझे ना। रातों रात मिटा दूंगी बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान।
0: ये आपने फिल्म में सुना है?
1: नहीं, यूट्यूब पे।
0: कोई बच्ची बोल रही थी आपके जैसी?
1: नहीं, बड़े लोग।
0: जा, तो आपको ये अच्छा लगा?
1: ठीक ठीक लगा, ज्यादा अच्छा नहीं।
0: ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो कुछ ऐसा सुनाओ जो अच्छा लगा।
1: यही अच्छा लगा।
0: अच्छा अच्छा, अब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको?
1: स्कूल में फ्रेंड्स मिलते हैं और जब मैं स्कूल जाऊंगी उस दिन गेम्स का पीरियड है तो मजा भी आएगा।
0: कौन सा गेम खेलती हो?
1: हम अभी के लिए तो बैडमिंटन और यही गेम्स खेलते हैं, डोज बॉल।
0: अच्छा, घर में आप थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हो, जैसे मम्मा हैं या पेरेंट्स हैं आपके?
1: हाँ।
0: क्या काम करते हो?
1: मैं बोटल्स में पानी भर के रखती हूँ ठंडा होने के लिए, उनके कपड़े को घड़ी करके रखती हूँ और कभी कभी सफाई कर देती हूँ थोड़ी बहुत।
0: सफाई तो बिल्कुल करनी चाहिए, सफाई बहुत अच्छी चीज़ है ना। और ये जो भैया है आपका, ये गंदगी करता है या सफाई करता है?
1: मेरे साथ कभी थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर लेता है और कभी गंदगी भी करता है।
0: फिर आप कान खींचते हो इसके?
1: कान कभी कभी।
0: इससे ही बातें करते हैं ना।
1: चलो,
0: क्या नाम है आपका?
2: आयांश।
0: और अभी सब फ्रेंड्स को हेलो बोलिए जो आपको सुन रहे हैं, बोलिए।
2: हेलो फ्रेंड्स।
0: थोड़ा जोर से बोलिए।
2: हेलो फ्रेंड्स।
0: आयांश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: LKG।
0: LKG में पढ़ते हो। KG में आपने कुछ सीखा है, पोयम सीखी है कोई?
2: हाँ।
0: सीखी है?
2: हाँ।
0: सुनाइए।
2: 1, 2, 3।
0: 1, 2, 3 सीखा है?
2: हाँ।
0: सुनाओ।
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10।
0: थोड़ा जोर से बोलिए।
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10।
0: 8 भी आता है बीच में? अच्छा। ट्विंकल ट्विंकल वाली पोयम आती है?
2: नहीं।
0: जॉनी जॉनी वाली
2: आती है?
0: सुनाइए अपने फ्रेंड्स को। अभी आपने हेलो बोला ना, अब वो सोच रहे होंगे आयांश कुछ सुनाएगा हमें।
2: जॉनी जॉनी, यस पापा, शुक्र नए नए पापा।
0: जॉनी जॉनी यस पापा आता है बस? हाँ।
2: हाँ।
0: चलो ठीक है, काफी है इतना। और आपको काउंटिंग भी आती है ना, 1, 2, 10?
2: हाँ।
0: 10 के आगे नहीं आती। तो आयांश, आपको छुट्टियों के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: आती है काउंटिंग।
0: आती है?
2: हाँ।
0: 10 के आगे आती है?
2: हाँ।
0: सुनाओ।
2: 11,
0: very good,
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
0: यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा पोयम भी याद आई क्या कोई सी? जॉनी जॉनी पूरी याद आई?
2: हाँ
0: सुनाओ।
2: अभी तो सुनाई,
0: अभी एक ही लाइन सुनाई थी, पूरी पूरी मैं बोल रही हूँ, पूरी याद आई?
2: हाँ
0: सुनाओ सुनो।
2: जॉनी जॉनी ऐसे पापा जोड़ रहे थे नहीं बाप।
0: अच्छा और अपने हाथों से आप हार्ट का शेप बना रहे हो?
2: नहीं।
0: अच्छा अब जो आपके फ्रेंड सुन रहे हैं उनसे कुछ और भी बात बोलनी है आपको?
2: नहीं
0: कुछ नहीं बोलना।
2: नहीं।
0: अच्छा छुट्टियों में क्या करते हो ये तो बताओ हमें।
2: छुट्टियों में रुक जाता हूँ घर पे।
0: और घर पे रुक के क्या होता है?
2: नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ।
0: और आप स्पेशल कपड़े कब पहनते हो?
2: फैशन कपड़े बाजार के लिए होता है।
0: बाजार के लिए स्पेशल कपड़े पहनते हो, तो वो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं?
2: ड्रेसिंग रूम में।
0: ड्रेसिंग रूम में। और जो नॉर्मल कपड़े हैं वो कहाँ होते हैं?
2: वो भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं।
0: अच्छा लेकिन आपने जो पहना है हमें तो ये काफी स्पेशल लग रहा है, ये भी ये किसने बनाया आपको?
2: ए, मामा ने। आपके पास में टिश्यू पेपर है ना?
0: टिश्यू पेपर है। हाँ टिश्यू पेपर किस लिए काम आता है?
2: पोंछने के लिए।
0: क्या पोंछने के लिए?
2: खाना।
0: खाना पोंछने के लिए, वेरी गुड। और भी पसीना भी पोंछ सकते हैं?
2: पसीना नहीं मार सकते, पसीना तो पाउडर से नहीं तो ऑयल से।
0: ऑयल से पोंछते हैं पसीना?
2: नहीं तो पाउडर से।
0: और पाउडर से पोंछते हैं? ये तो यार आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे पता नहीं था। ऑयल से कैसे पोंछते हैं पसीना?
2: और बस बस
0: बस।
2: हाँ
0: बस।
2: हाँ
0: बस की ट्रेन?
2: बस
0: बस। हाँ अपनी भी बस। चलो
2: क्या बोलूँ?
0: कोई गाना सुनाओगे?
2: नहीं।
0: कोई बात करनी है फ्रेंड से?
2: हेलो।
0: अच्छा बाय बोलो, बाय बोलने का टाइम आ गया।
2: बाय, सी यू।
3: बाय फ्रेंड।
2: बाय फ्रेंड।
0: तो बच्चों ये थे ये बहुत प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे। बच्चों इन प्यारे दोस्तों से मिलने के बाद अब समय है हमारे गीत का। चलिए तो सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। आप भी कोशिश कीजिएगा संग संग

और इसी गीत के साथ अब वक्त है आपसे बाय बोलने का। जी हाँ, अब हमें ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। आपका बहुत सारा धन्यवाद ये प्रोग्राम सुनने के लिए, और ये था आज का मुस्कान। मिलेंगे आपसे ऐसी ही प्यारी प्यारी बातों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, और आपके चेहरे पर हमेशा हमेशा खिली रहे मुस्कान। नमस्कार।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे तमिल समुदाय विशेष उत्साहित है। ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने यहां शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और रोड शो में सहभागिता भी की। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। श्री स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण, मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरीय निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। और राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6:00 से। 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें गीत संगीत और चर्चा के साथ ही सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:30 से। विषय रहेगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य। इस विषय पर आप सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर रहेगा 2660902 और 2660903। विशेषज्ञ होंगे प्रवीण कुमार जगा। रात 8:00 का समय सुर्खियों में कार्यक्रम के लिए होगा। डकर विकास के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री ई विद्या योजना छतरपुर की प्रस्तुति रही। रविवासरीय संगीत सभा जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे।

इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए सभा का आरंभ करते हैं युवा साथियों के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी के साथ। आपको सुनवाते हैं युववाणी।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त इरा। साथियों, युववाणी एक ऐसा मंच है, एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम युवाओं के मन की बात करते हैं, उनके सपनों, उनकी चुनौतियों, उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे जीवन की भागदौड़ में खुद को सकारात्मक रखा जाए, कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस बना रखा जाए और कैसे स्वयं को हर दिन प्रेरित किया जाए। और आज का कार्यक्रम भी कुछ इसी तरह होने वाला है। ढेर सारी बातचीत, बहुत सारी रोचक जानकारियाँ और साथ ही ये भी जानेंगे कि आज के दिन को किस रूप में मनाया जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के युववाणी कार्यक्रम में। और साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग आपसे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए फिर आज के कार्यक्रम के भी प्रश्न आप सभी को बता देते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां 5 नदियों का संगम होता है, या कहें जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है। मैं प्रश्न फिर से दोहराती हूँ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी को खोजने हैं और सही उत्तर मिलने पर हमें ईमेल के माध्यम से बताना है। साथ ही हम भी सही उत्तर आप सभी के साथ कार्यक्रम के अंत में साझा करेंगे ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा

0: दोस्तों, जीवन में हम सभी कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई सपना पूरा हो जाता है तो कभी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है। कभी सफलता हमारे कदम चूमती है तो कभी असफलता हमें कुछ नया सिखा कर चली जाती है। लेकिन जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है और साथ ही कुछ नया अवसर भी देता है, एक नई शुरुआत करने का अवसर। आज इसी संदर्भ में मुझे हिंदी साहित्य के महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता जो बीत गई सो बात गई की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। साथियों, कितनी गहरी बात कही है ना बच्चन जी ने। जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। कुछ अवसर छूट जाते हैं, कुछ रिश्ते पीछे रह जाते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं हो पाते, लेकिन क्या जीवन वहीं रुक जाता है? नहीं, आसमान भी तो टूटते तारों को रोज देखता है, लेकिन अगली सुबह फिर उसी चमक और उसी विशालता के साथ हमारे सामने खड़ा होता है। प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और आगे बढ़ना जीवन का धर्म। और आज का युवा भी अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है। किसी को अपने करियर की चिंता है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उलझनों में है, कोई छोटी सी असफलता है जिससे निराश होकर बैठा है। अपनी सारी क्षमताओं पर ही प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं हम इसी से। लेकिन दोस्तों, एक परीक्षा या एक इंटरव्यू, एक अवसर या एक असफलता हमारे पूरे भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकती। और याद रखिए, जीवन की किताब का अगर एक पन्ना यदि अच्छा नहीं रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी किताब ही खराब हो गई। हमें बस वो पन्ना पलटना होता है और आगे लिखना शुरू करना होता है। हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियाँ हमें यही संदेश देती है कि अतीत से सीखिए, लेकिन उसमें जीना मत शुरू कर दीजिए। जो खो गया उससे अनुभव लीजिए, जो मिला है उसकी कद्र कीजिए और जो आने वाला है उसका उत्साह के साथ स्वागत कीजिए। तो साथियों, यदि आपके मन में भी कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार पीछे ले जाती है, कोई पुरानी असफलता, कोई अधूरा सपना या कोई छूटा हुआ अवसर, तो आज से उसे एक मुस्कान के साथ विदा कर दीजिए। क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर संभावनाएं हमेशा हमारे सामने होती हैं, ना कि पीछे। इन्हीं सकारात्मक विचारों और नई ऊर्जाओं के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: साथियों, हर साल 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि कई युवा केवल जिज्ञासा, दोस्तों के दबाव या दिखावे के कारण तंबाकू, सिगरेट या अन्य नशे की शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत में ये केवल एक प्रयोग लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत एक लत का रूप ले लेती है। सोचिए, जिस उम्र में हमें अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए, अपने करियर और भविष्य को संवारना चाहिए, उस उम्र में यदि हम ऐसी आदतों के शिकार हो जाएं, तो हमारे स्वास्थ्य और जीवन दोनों को नुकसान पहुंचाएंगी और ये हमें कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं भविष्य में जाकर। तंबाकू केवल शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास, आर्थिक स्थिति और परिवार की खुशियों को भी प्रभावित कर सकती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बार या थोड़ी सी मात्रा से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन हर बड़ी आदत की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। दोस्तों, आज जब हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं, तो ये केवल एक दिन मनाने का अवसर नहीं है, बल्कि खुद को या खुद से एक सवाल पूछने का अवसर है। क्या हम अपने शरीर और अपने भविष्य के प्रति सच में जिम्मेदार हैं? यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति तंबाकू या धूम्रपान की आदत से जूझ रहा है, तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय आप लोग उसे समझाइए, उसका साथ दीजिए और उन्हें इसके हानि जो तंबाकू या किसी भी प्रकार का नशा करने से हानि पहुंचती है, उसके बारे में उन्हें जागरूक करिए। इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम सभी मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें, स्वस्थ जीवन अपनाने का, जागरूक रहने का और तंबाकू को अपने जीवन से दूर रखने का, क्योंकि एक स्वस्थ युवा ही एक मजबूत समाज और बेहतर भारत का निर्माण कर सकता है।
1: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है।
2: बताए दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

सा चक्कर कुछ ऐसी आंधी बड़ी हमका करनी बड़ी कूदा फांदी बड़ी लंबी चौड़ी हुई भागा दौड़ी दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग के हम कभी ना गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी उधर भागे फिर तुमने दिया ये फान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में।

हो छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा।

करे अठखेली उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन सब देखें उसको पलट पलट और घूम घूम वो नगर नगर जाए टगर टगर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर सुंदर बाला पलकों में लिए एक सपन लोक अधरों में लिए यौवन हाला इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो रूपवती है वो मधुमती

0: छोरा हो छोरा गंगा किनारे वाला हो छोरा गंगा किनारे वाला।
1: दोस्तों गर्मी का मौसम आते ही हम सभी एक चीज ढूंढने लगते हैं, थोड़ी सी ठंडक। लेकिन क्या आपने एक बात गौर की है, जब हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पर रुके होते हैं या कहीं बाहर खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र किसी पेड़ पर ही जाती है कि हम पेड़ की छांव ले लें। चाहे कितनी भी धूप हो, लोग उसी पेड़ के नीचे खड़े होना पसंद करते हैं। अक्सर हम पेड़ों की अहमियत को तब तक नहीं समझते जब तक उनकी ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती। आज हमारे पास एसी है, कूलर है, गाड़ियां हैं, लेकिन इन सुविधाओं के बढ़ते इस्तेमाल से प्रदूषण भी बढ़ रहा है और यही ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न भी है, क्योंकि इन सभी व्हीकल्स से

जो एसी से जो हीट निकलती है वो हमारे जो टेम्परेचर है उसको और भी गर्म बना देती है। और हम लोग अगर पेड़ पौधों की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन की ओर ही बढ़ रहे हैं। पेड़ जितने कट रहे हैं उससे आधे से भी कम मात्रा में हम लोग प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। तो जैसे कि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है शहर में, तो हम सब देख आप सभी ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि कोई पेड़ उस कॉर्नर पे चल रहा है, गाड़ी उस कॉर्नर पे चला रहा है जहाँ पेड़ की छाव मिल रही है, या हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं तो सभी लोग वहाँ खड़े होना चाहते हैं जहाँ पेड़ है, ताकि थोड़ी सी ठंडक महसूस करें। तो कहीं ना कहीं हम सभी को पेड़ों की अहमियत तो समझ आ ही गई होगी, वो हमें ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ ही हमारे वातावरण को भी ठंडक, उसमें भी ठंडक हमें प्रदान करते हैं। तो आप सभी से बस हमारा यही अनुरोध रहेगा, आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि हम सब कोशिश करें कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं, एक पौधा लगाएं और उसे पेड़ होने तक उसकी देखभाल करें, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, हष्टपुष्ट नहीं हो जाता, उसकी देखभाल करें। और अगर हम सब मिलके बस एक पेड़ लगाएंगे ना, तो भी हम जो हमारा वातावरण है, और हर बार हमारी ये कंप्लेन रहती है कि इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, पहले के मुताबिक इस साल गर्मी ज़्यादा है, वो कंप्लेन हमारी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी इस बार एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। और आइए अब कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

साथियों, आज का दौर तकनीक का दौर है। हर दिन कोई नई खोज, कोई नया आविष्कार और कोई नई तकनीक हमारे जीवन का हिस्सा बन रही है। अगर आज के समय में सबसे अधिक चर्चा किसी विषय की हो रही है तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। दोस्तों, जब हम AI का नाम सुनते हैं तो कई लोगों के मन में रोबोट, मशीनें या भविष्य की कोई काल्पनिक दुनिया आ जाती है। लेकिन सच तो ये है कि AI आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया है। जब हम मोबाइल में किसी गाने की सिफारिश देखते हैं, गूगल मैप्स हमें रास्ता बताते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्ट टूल्स का उपयोग करते हैं या किसी सवाल का उत्तर कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं AI ही काम कर रहा होता है। साथियों, आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई में आयोजित मुंबई टेक वीक में भी AI सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा। इस टेक फेस्ट में देश और दुनिया के तकनीकी विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, निवेशकों और युवा एंटरप्रेन्योर्स ने हिस्सा लिया था और कार्यक्रम का मुख्य विषय भी AI इन एक्शन, यानी कि AI को केवल एक तकनीक के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में उपयोग करने पर चर्चा की गई थी। इस कार्यक्रम में ये भी देखा गया कि कैसे AI स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, मीडिया, मनोरंजन और रोजगार के क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। और विशेषज्ञों ने ये भी बताया कि आजकल डॉक्टर्स AI के माध्यम से जो बीमारियां हैं उनको भी डिटेक्ट कर रहे हैं। तो AI कहीं ना कहीं हम देखें तो हम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ChatGPT हो गया, Gemini हो गया। लेकिन साथियों, इसी के इस्तेमाल के साथ हमारी डिपेंडेंसी जैसे कि इस पर बढ़ती जा रही है, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पूरी तरह से किसी टूल पर या AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट ना रहें। हम लोग उसका उतना ही उपयोग करें जितनी ज़रूरत है और कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, हमें इसके बारे में खोज करनी होगी। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो साथियों, अब वक्त हो चला है आप सभी के साथ वो प्रश्नों के उत्तर साझा करने का जो हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे थे। पहला प्रश्न था, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे पांच नदियों की भूमि कहा जाता है, जिसका उत्तर है पंजाब। पंजाब का नाम ही पंज यानी कि पांच और आब यानी नदी से मिलकर बना है और ऐतिहासिक रूप से यहाँ पांच प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं, झेलम, चिनाब,

रावी, ब्यास और सतलुज। और दूसरा प्रश्न था, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को छूता है, जिसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्यों से मिलती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। तो साथियों, ये था आज का युवाणी कार्यक्रम। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो हमें पत्र और ईमेल के माध्यम से बताना बिल्कुल ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस है airindore.in@gmail.com। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त इरा को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मैंने प्यार किया इस फिल्म के गीत के साथ। इसे गाया है एसपी बालसुब्रमण्यम ने। गीत रचना असद भोपाली की है और संगीत है राम लक्ष्मण का।

श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अगला गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म इश्क से। इस गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

और अब आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत दस्तक फिल्म से। इसे गाया है उदित नारायण ने और संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने।

दस्तक फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, जावेद अख्तर का लिखा हुआ। और अब आपको सुनवाते हैं करीब फिल्म से कुमार शानू की आवाज और संजीवनी की आवाज में राहत इंदौरी का लिखा गीत। इसे संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

शदा समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और अब आपको सुनवाते हैं जावेद अख्तर का लिखा एक और गीत यस बॉस फिल्म से। इसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने।

और ऐसा ही गुनगुनाता खिलखिलाता एक और गीत आपके लिए लेकर आए हैं सातवां आसमान फिल्म से। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ है, सूरज ने इस गीत को लिखा है और राम लक्ष्मण का संगीत।

रहना है तेरे दिल में। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं के और हरीश जसराज की आवाज़ में। समीर का लिखा यह गीत है, आइए सुनें।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिणीता फिल्म का गीत, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजें हैं। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीतबद्ध किया शांतनु मोइत्रा ने। आइए सुने परिणीता फिल्म का ये गीत।

श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे परिणीता फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं हरिओम शरण के गाए राम भजन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस भक्ति संगीत के साथ। हरिओम शरण की आवाज़ में सुनिए ये राम भक्ति गीत।

0: सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे हरिओम शरण और साथियों के गाए भक्ति गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और IOS प्लेटफॉर्म पर

0: भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में सुनिए बद्रीलाल मालवी और साथियों के गाए लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बद्रीलाल मालवी की आवाज़ में लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर

0: ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज के कार्यक्रमों में 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता तंबाकू निषेध दिवस विषय पर। वार्ताकार हैं डॉक्टर विनोद अंधारे, और साथ ही आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा हमारे भोपाल केंद्र से रात 8:00 बजे। 8:15 पर आपको सुनवाएंगे डगर विकास की, ये भी हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर, और चित्रगीत हमेशा की तरह लेकर हाजिर होंगे आपके लिए 9:15 पर। श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन लेकर हाजिर होंगे रात 9:30 पर, और रात 10:00 बजे आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जो कि हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएगी। श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब आपको बताते हैं कल प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम होंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। 6:30 पर लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें कल का विषय है स्वाभिमान और अभिमान। आलेख निहारिका का है और वाचक हैं वंदना तिवारी। 6:35 पर सुनिएगा खेती की बातें, जिसमें कल बातें होंगी मिट्टी परीक्षण की। आलेख भारती उपाध्याय का। 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरितमानस गान गुड मॉर्निंग इंदौर। ये कार्यक्रम होगा 7:20 पर, जिसमें कल का विषय है ग्लोबल डे और विश्व पर्यावरण दिवस पर होंगी बातचीत। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर, और मराठी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:00 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में कल आप सुनेंगे भुवनेश कुमकली और साथियों का गायन। राग होगा भटियार। जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी भोपाल केंद्र से सुबह 10:00 बजे। फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन लेकर हाजिर होंगे आपके लिए 10:05 पर। मध्य प्रदेश केंद्र से कार्यक्रमों का आरंभ होगा 11:00 बजे से। फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा फोन करे गीत सुने। फिल्म संगीत 12:00 बजे से, और संग्रहालय से कार्यक्रम होगा 12:30 पर। स्वास्थ्य दर्पण लेकर हाजिर होंगे 1:00 बजे से, और लोक संगीत आप सुनेंगे 1:30 पर। सुगम संगीत होगा 1:45 पर। आकाशवाणी इंदौर से शाम की सभा का आरंभ होगा युवाणी के साथ शाम 5:00 बजे। युवाणी में कल का क्रम है कुछ बातें कुछ गीत। फिल्म संगीत सुनिएगा 5:45 पर, और प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आपको सुनवाएंगे शाम 6:00 बजे से। सुगम संगीत में कल आपको सुनवाएंगे भूपेंद्र सिंह के गाए गीत शाम 6:30 पर। 7:20 पर हमेशा की तरह लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी दिल ने फिर याद किया। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00 बजे, और चित्रगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 9:15 पर। पब्लिक स्पीक दिल्ली से प्रसारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:30 बजे, और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन लेकर हाजिर होंगे आपके लिए रात 10:00 बजे। शास्त्रीय संगीत में कल 10:30 पर आपको सुनवाएंगे भुवनेश कुमकली और साथियों का गायन। राग होगा शिव केदार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा।
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मध्य टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए

0: निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 8958757335 और 8213263866 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांवों की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
2: दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला और गौशाला के लिए 3-4 प्रकार जो पंचायत गौशाला खोलती है गौशाला में वहाँ मदद कर रहे हैं। नगरी निकाय में पहले पिंजरा पुल खड़क बनते, हमने कहा पिंजरा पुल खड़क बनाने की जरूरत नहीं, गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क न पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, बड़ी गौशाला नगरी निकाय जहाँ नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ग्वालियर में तो 9,000 की किसानों की आय बढ़ाने की जो हमारी प्रतिबद्धता, मुझे इस बात का संतोष है कि आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से साक्षी के आधार पर हमने अपने दूध का कलेक्शन 10 लाख लीटर प्रति बंदे से आता जो लीटर प्रतिदिन का था उसको बढ़ा करके 12 से 15 लाख लीटर तक ले गए और आगे बढ़ा करके जो देश के अंदर हमारा जो सहयोग 12% का था इसको 20% तक ले जा करके हमारे किसानों की आय दूध के माध्यम से भी बढ़ना चाहिए।
0: एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी, बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन

जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने शांतिपुरी विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन का बिंदु की राम राम। आपको इना कार्यक्रम में घणु घणु स्वागत भी छे। किसान भाइयों, अभी उनाड़ा की वक्त में अपन देखी रहा कि अपना खेत वाड़ी में अपन बिल्कुल एकदम सुनसान चली रही, क्योंकि हमने तो अच्छी गहरी जुताई करी कर रखी और जिन्हें नहीं करी है वो करी भी लेगा, क्योंकि अभी पानी पड़ने में बखत छे। अब जसो जसो पानी पड़ना का बरसात को दिन पास में ही रोज ओका पहले अपन बहुत सारा ऐसा काम काज है जो कि निपटाई लेवा। सबसे पहले तो अच्छो खेत न खूब हल बखरी देवा, जगह से घाम लगी जाए न छे तो जो भी ओम हानिकारक कीट कीटाणु वो छे वो खत्म ही जाए। घाम लगने से जो माटी छे खेत की अच्छी भुरभुरी भी हुई जाए। फिर छे तो का बाद में जब पानी पड़े तो वो माटी उपजाऊ हो जाए और हम जब भी वावणी करान तो ये बरसात का पानी से खूब जल्दी डिसूर फूटी आवे और छे तो जो भी फसल लेवान वो अच्छी हो। तो हमका एक का लेना पहले से तैयारी कर लेनु चाहिए और फिर अपना खेतवाड़ी का साथ साथ घर का भी देखी रहा कि घर जो अपनो छे जिनका कच्चा घर छे तो उन्हीं बखत में छे तो जहाँ कवेलू नाखेल छे पतरा

छे उनका ठीक ठाक कर ले ताकि बरसात में ओमा कहीं पानी नहीं गया। तो अभी ये बखत छे कि अपन ये बरसात का पहले का सब कामकाज करी लेवा। हमारा बहुत सा किसान भाई बहन छे जिनका पास छे तो ज़्यादा खेती नहीं है, ज़्यादा आय नहीं होती, उनका पैसा नहीं मिलता है कि वो छे तो खूब अच्छा घर न का पक्का कर ले। पर प्रधानमंत्री आवास योजना का अंतर्गत वो छे तो अपना घर न का पक्को करी सकज। एवं छे तो जो ये योजना छे एक शुरुआत करी थी 20 जून 2015 में, एक उद्देश्य ये थो कि जो अपना किसान भाई बहन या दूसरा जो भी मजदूरी करे उनका पास खुद को घर नहीं हो तो, और हर एक को एक सपनों रहे कि अपनों एक छत होए, अपने खुद को घर होए जहां वो सुरक्षित रह सका। भाई देखो प्रयास में तो हमारा सभी कोई भाई बहन रह, पर कहीं से अगर मदद मिली जाए तो फिर उनको प्रयास दुगुनो हो जाए, वो छे तो एक कोशिश आरू करने लगे। तो असज इन योजना को भी उद्देश्य ये छे कि भाई जो गरीब भाई बहन छे उनको अपनो खुद को घर होए, पक्को घर होए, एकालेना छे तो ये योजना चलाई गई। ये योजना गाँव में ने शहर में दो ही जगह चलाई गई। शहर में जैसा जुग्गी झोपड़ी जो छे बेघर परिवार छे उनका लेना भी ये छे, और गाँव में भी छे, तो ये योजना को लाभ लो।

0: तो अभी हमारा किसान भाई बहन ने ना साधना उपाध्याय ने साथियों को गायल यो लोकगीत सुनो और ये निमाड़ी लोकगीत हो और आनंद भी आयो। किसान भाई बहन अब बात कर रहा था कि जो अपनी प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना सुविधा मिले तो शहर न तो जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहे या बेघर लोग छे या गरीब परिवार छे जिन जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छे जिनकी साल भरी के आय 3 लाख से कम छे तो उनका भी ये सुविधा मिले। अगर वो आवेदन करे अपना छे तो एक की जो वेबसाइट छे ओका ऊपर तो वहाँ जाकर एक आवेदन करी सके न जो भी जरूरी कागज मांगज वगैरह तो वो अपन उमा दे दे मा तो इन योजना को लाभ अपन शहर में भी ले सकें। शहर का लेना छे तो अलग जो राशि नियत करी गई वो अलग छे और गांव न का लेना अलग छे। गांव न का लेना एक लेना अलग छे कि बहुत सा जो अपना भाई बहन छे वो छे तो समतल जगह पर है और बहुत सा ऐसा छे जो कि पहाड़ी जगह पर भी रहे तो जहाँ जो जैसा मैदानी जगह या समतल जगह पर छे तो उनका छे तो 1,20,000 तक की सहायता मिले और जो समतल मैदानी पहाड़ी जगह पर छे उनका 1,30,000 तक की सहायता मिले जो कि सीधा उनका बैंक का खाता में आवे तो इन योजना को वो लाभ ले सके। अपनों जो रहनों को घर छे ओको पक्को करी सके वो पक्को घर एका लेना भी छे कि ये हमको अभी बरसात भी आने वाली छे और छे तो कई जो मौसमी आपदा ना आवज वो कसी बचाई करने रखे तो जरूर से इन योजना को लाभ लेकर ना जिनका घर कच्चा छे वो छे तो एक ये योजना की सहायता से अपना घर का पक्को करी सके और वह आराम से रह सके क्योंकि पक्का घर में सुरक्षित भी रहे और ये सुरक्षित भी छे और सुविधाजनक भी छे। ऐसा घर ना में जैसे आम छे तो शौचालय अगर बनाना हो तो का लेना 12,000 रुपये मिले तो आप शौचालय भी बनाई सको मतलब सुविधा छे ओको लाभ लेनु आना चाहिए और ओका लेना हम आवेदन करा तो हमको जल्दी से जल्दी ओको फायदो मिली सके। तो ये तो बात हुई कि प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ और कब कसी अपन एक फायदो ले सकें तो हमारा किसान भाई बहन ये जान ही गया होगा। और किसान भाई बहन और आज एक विशेष दिवस छे तंबाकू निषेध दिवस है नी। ये तंबाकू निषेध दिवस अपन आज का दिन मनावें एक लेना क्यों मनावें क्योंकि लोग ना में जागरूकता आव तो जागरूकता कसी आवेगा जब हम आपस में बातचीत करेंगा या किसी को का बारे में समझावेंगा कि कसी काई नुकसान छे तब तो हम एक लेना छे तो एको निषेध दिवस मनाने को एक सही अर्थ जानी सकेंगा। तो आज हमारा जो डॉक्टर विनोद अंधारे छे वो अपना को बतावा कि तंबाकू निषेध दिवस पर वो कई कई बात ना बताई राज्य का हम अमल में लाई सकें तो सुना इनका सी।
1: नमस्कार, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई 2026 को मनाया जा रहा है उसके विषय में चर्चा करूंगा। जैसा कि यह विषय ही बता रहा है कि तंबाकू को समाप्त करना है जीवन के उपयोग के लिए और हम जब हम देखते हैं कि इस

तो किसान भाइयों, अभी अपन डॉक्टर विनोद अंधारे से सुने कि तंबाकू निषेध कसो होना चाहिए और काई का एक लेना होना चाहिए, कितना दुष्प्रभाव छे का अपना शरीर का ऊपर होए, है नी, तरह तरह का कैंसर एकासी हुई जाए। तो हमारा सभी भाई बहन का चाहिए कि वो छे तो बिल्कुल भी तंबाकू को उपयोग नहीं कर। अपन देखी राज की कितना नया नया तरीका सी तंबाकू का, कभी पान का गुटका ना हो और कभी छे तो सीधा तंबाकू या कच्चा रूप में भी तंबाकू को उपयोग हुई जाए। अब छे तो सब ऐसा कहे कि तंबाकू खाने का सी छे तो मुड़ा का जो रोग छे वो खत्म ही जाए या दांत अच्छा रहे, ये सब भ्रांति न छे, ये सब झूठ बात न छे। बल्कि दिन दिन अपन देखा है कि अपना दांत खराब हुई जाए, कई तरह की दूसरी ऐसी बीमारी न हुई जाए कि हम खानू भी नहीं खाई पाता है। तो अपना शरीर का अच्छा रखना का लेना हमका जरूरी छे कि हम ऐसा कोई भी नशीला पदार्थ को उपयोग नहीं करा, अपना शरीर को स्वस्थ रखना का लेना। न साथ ही ये भी देखा कि भाई अगर हम घर का कोई भी एक सदस्य इना नशीला पदार्थ को उपयोग करे, वो तंबाकू हुए, बीड़ी होए, चाहे और भी दूसरा कोई सा पदार्थ होए जेका सी नशो होए, तो ओका उपयोग करे तो घर का आरू जो नाना नाना बालक छे या दूसरा सदस्य छे उनका ऊपर भी एको असर पड़े। वो कचे तो या तो मानसिक रूप से अपन देखा कि जो छोटा बालक छे उनका भी एक छे तो उत्सुकता रहे कि ये बड़ा ही लहराज ये खाए तो अपन क्यों नहीं खाई सकता है। धीरे धीरे ओ ना समझी में एक उपयोग करे, चोरी छिप करे, सामना नहीं करता है पर छुपी छुपी ना एक उपयोग करे और बाद में ये उनकी आदत बनी जाए। और जब नहीं मिलते हैं तो एका लेना छे तो वो हमेशा तरसा करे और एका साथ ज उनका कई तरह की दूसरी मानसिक बीमारी ना भी जाए। तो हमका घर में भी एक उपयोग बिल्कुल नहीं करनू है। और छे तो अपन देखी राज के अपन अपने खेती बाड़ी में अपन जैसा कि कामकाज कराएं, बहुत सा अपना किसान भाई बहन जो बीड़ी छे, सिगरेट छे या आरू भी ऐसा जो जड़ावण वाला पदार्थ छे नशीला ओको उपयोग करी ले और उन्हीं बखत में छे तो अपना कहीं मोटर का वहाँ काम करी रहा है या बिजली का वहाँ काम करी रहा है तो उनमें आग लगने को भी डर रहे। कहीं अपन देखा है कि सुकलो भरेल छे अपनो गाय ढोरना का लेना खाना का लेना उनको आहार भरेल छे और वहाँ बीड़ी पी रहा है और कथे भी फेंकी दे तो आग लगी जाए। तो इन्हीं बात को ध्यान रखा और अपना खुद सुरक्षित रखा, साथ ही अपना परिवार का भी सुरक्षित रखा। और छे तो देखो आम फिर मन करी रोज की करूँ लोकगीत सुने जाए तो सुनांज राम होता रखंडा न साथी को गाय यो लोकगीत।

तो अभी अपना किसान भाई बहन ने ना राम अवतार अखंड को गायल यो मावी लोग गीत सुनियो और आनंद भी आयो। किसान भाई बहन अभी छे तो नौतपा चली रो न खूब गर्मी घाम पड़ी रोज अच्छो आसाम छे तो अपन देखी राज की कई बार लू भी लगी जाए पर हमारो बचाव तो ये छे कि अपन पहले अगर सावधानी रखा तो हम कोई भी परेशानी छे तो कहना से पहले अगर सावधानी रखा तो कसी बची सकें असज अभी छे तो जितनी ज़्यादा घाम पड़ी रोज तो हमको बहुत जरूरी हो तो कहीं निकलना चाहिए पर दोपहर की बखत में 12 बजे से लेकर 4 बजे का बीच में छे तो हम बिल्कुल भी घर से नहीं निकला तो ज़्यादा अच्छा रहे। जितना भी काम छे हमारा सुबह न संध्या की बखत निपटे लेवा और खाना पीना में विशेष ध्यान रखा इन्हीं गर्मी से बचे रहवा ठंडो पदार्थ हम लेता रहा और अपना घर में छे तो नाना नाना बालक बड़ा बुढ़ानों को भी ध्यान रखा जेका से वो भी इन्हीं गर्मी से बची सका लू लगना से बची सका और अगर लू लगी गई तो जल्दी से उसको उपाय करना चाहिए ताकि हम बीमार नहीं पड़ा और स्वस्थ रहा। तो गर्मी जब पड़ी रही जाती तो आसो जे करूँ अपन लोग गीत सुनी रहे उषा रायकवार को गायल

तो अभी हमारा किसान भाई बहन है ना उषा राय कर्ण साथी को गायल यो लोकगीत सुनियो, लोकगीत में आनंद भी आयो और गर्मी को भी हम आनंद ले सकें। पर अगर सावधानी से रहवा तो हम गर्मी को मौसम कभी अच्छो बने सकें, पर थोड़ी जरूरत है कि हम किस तरह से रहवा, अपनो खान पान कसो रखा, अपनो रहन सहन कसो रखा, कहीं जानू है तो कहाँ जावा और कहाँ आवा, इन्हीं बात को जरूर से ध्यान रखा। किसान भाइयों चलता चलता बखत हुई रही तो काल की भी तय करा, काल सौंदारा से खेती की जो बात न होएगा वो मछे तो मिट्टी परीक्षण का आरंभ बताएगा भारतीय उपाध्याय और संजा के खेती गृहस्थी जमा आज की बात न भेंट वार्ता लोकगीत ये सब सुनवाऊंगा हम आपका। और चलते चलते हम पछा छे तो बात पावा अपनी खेतीबाड़ी की, तो खेतीबाड़ी अभी अपना का जो तैयारी करनू वो करी लेवा और निश्चिंत रहवा कुछ दिन का लेना जब तक कि अपन बरसात आई नहीं जाती है तो तब तक का लेना अपन आराम से बैठी सकें। और अब हमारी घड़ी भी कह रही है कि हम आराम से बैठा और हम आप चला पछा मिलंगा तब तक का लेना। सभी किसान भाई बहनों को बिंदु की राम राम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में अगला प्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अशोक जी, मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
3: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो थी मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और इसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में इससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेय जल हैं या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत जो ताम्रपत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए। फिर तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और काफी लंबी समय तक बातचीत की। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।
2: और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों की हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने पहले अभी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
3: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं। और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में, समाज हित में, जब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है, और खासतौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने गुरिंदर वीर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना, कुलदीप कुमार, इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की। और 2 एथलीट हम बात करेंगे तो गुरिंदर सिंह और अनिमेश, इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन

0: की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
1: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
2: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहां पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा अभी हमने सुना, चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई, एक विशेष कार्यक्रम हुआ, और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर हैं, ये भारत में जब वापस आएंगी तो भारत की धरोहर, संस्कृति, विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
0: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है। तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और आज के युवाओं ने भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
0: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी, और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची, और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया, और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है, और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं, और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का ये संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव हैं। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम डगर विकास के। विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुँच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देती हुई आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या की प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता आर्जरिया।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते, तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे डालते हैं, कैसे दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों को जोड़ते हैं। तो ये 2004 में चालू हो गया था और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारत में इसका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हम नरोरा एकेडमी भी गए थे, जहां पर हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया था कि कैसे सैटेलाइट को अपन मटेरियल देते हैं, कैसे फोटो खींचते हैं, फिर कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद एजुसेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किन्हीं कारणों से, तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बाद का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है।

0: है, ना उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिट कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है, प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है। उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित, तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, जीआई टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में बीएसी के वैल्यू एडिट कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं, इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं?
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, पीएमई विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर खोज सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईआईटी है, जेई है, नीट है, पीएससी है, सारी भाषाओं में, बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। पीएमई विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
2: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते, और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। पीएम ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के पीएम ई विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
3: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक बृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को टीवी, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो आईटी मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है दीक्षा पोर्टल में। स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा

0: थे, तब हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बाट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटली लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
1: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
2: कई बार ऐसा होता था कि मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब कि क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, 2-3 लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे ही, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है जिसको पढ़ने में समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
1: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे स्वयं पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जो नए विद्यार्थी से जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
2: जैसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो और अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा, उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉग इन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो उसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो उसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम उसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
2: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉगिन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉगिन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है, हम कहीं भी कभी भी पढ़ लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
1: विद्यार्थियों के लिए कैसे मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल?
2: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी है इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि ना तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, ना कोई बुक लेनी है, ना बैग में कोई वजन हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हों, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
1: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दें। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हरवार और प्रस्तुतकर्ता रविंद्र कुमार प्रजापति, योगदान आकाशवाणी छतरपुर का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। डीजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आरंभ करते हैं दो दुनी चार इस फिल्म के गीत के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गुलजार का लिखा ये गाना है और हेमंत कुमार का संगीत।

मशरूर सुल्तानपुरी का लिखा गाना अब आपको सुनवाते हैं प्यार का मौसम फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, संगीत पद किया आर डी वर्मन ने।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में अंधा कानून फिल्म का गीत। गाने के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अंधा कानून फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय रात के 8:45 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
2: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
2: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रूपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
2: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयास

0: अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमा के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमा की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेष

0: विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes.

0: athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkham town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Aiyar, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the lair of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
0: Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: During the program, Mr. Modi also interacted with sprinters Gurinder Veer Singh and Animesh Kujur, who broke national records in the 100-meter race. Mr. Modi also reflected on the government's continuous efforts to preserve the country's priceless cultural heritage. He also referred to his recent visit to the Netherlands, where during a special ceremony, ancient copper plates from the Chol period were returned to India. The Prime Minister praised conservation efforts under the Namami Gange initiative, citing the successful rescue of a gangetic dolphin trapped in a canal in Uttar Pradesh with the help of India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged consumption of traditional summer beverages. Referring to mangoes, a favorite summer fruit, Prime Minister Narendra Modi praised the efforts of farmers, saying Indian mangoes are now reaching global markets from villages across the country. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions

एन इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ है, शैलेंद्र की रचना है और शंकर जय किशन का संगीत।

इसी गाने के साथ चित्रगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओ नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मन भावन में, जिसमें है आपके पसंद के गीत। तो आरंभ करते हैं धनवान फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। साहिर की रचना है और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत। पसंद है आप सभी श्रोताओं की आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ, शायना और निवान की। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, सरिता गंवाड़कर, एकांश गंवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता। नागपुर से शैलेश गंवाड़कर, वैशाली, श्वेता, सुमित गंवाड़कर और ध्वनि गंवाड़कर। मक्सी से इस गीत को सुनना चाहते हैं चैन सिंह आरोल, नानूराम कांसोटिया, नंद किशोर कांसोटिया और दिलीप कांसोटिया। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज और हिना केसर, वकील राही और फिरोज आलम, नाज प्रवीण। खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हस्तीन पवार, शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ग्राम दीवाल से थे। और ग्राम छेगांव से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र छवर, तनुश्री, आरोही और काना की ये पसंद है। खंडवा से इस गीत को सुनना चाहा संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय और अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय। आप सभी की पसंद पर सुनवाते हैं धनवान फिल्म का ये गीत।

0: और श्रोताओं, ऐसा ही एक और खूबसूरत गीत जो आपकी फरमाइश का है, अजनबी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी का लिखा ये गाना है और आरटी वर्मन का संगीत। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। उमरखेड़ से गंगाधर पोपलवाड़, समयक प्रियंका, स्वरित और उत्तम, छत्रपति शाम्बाजी नगर से राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश। दतरेंगी से इस गीत को पसंद किया है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, चावेंद्र कुमार, और अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश की ये पसंद है। डोंगरगांव से राशिपाल गजबी है, तन्मय, अनिका और अनिष्का और राधिका गजबी की ये पसंद। महाराष्ट्र से इस गीत को पसंद किया है श्री कृष्ण भाटे, संदीप भाटे और अमूल ने। चंदनगर सातारा से सतीश बागमारे, आतिश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और शमीण। कोल्हापुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं विजय चंबाड़, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत, माई चव्हाण और इनका समस्त परिवार।
1: Mm-hmm.

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।

शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं चलते चलते फिल्म का गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले। महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके। झुमरी तलैया से देव इंगोले, छगुली इंगोले, छोटू दादा इंगोले और आरडी इंगोले। इंदौर से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना और ललिता नारायण खर्चे और इनका समस्त परिवार। बड़वा से इस गीत को पसंद किया है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने। राजपुर से घीसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ और कुणाल। पुणे से प्रियंका, आर्या, पंकज बाड़ोदे और बाबा साहब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, इन सभी की पसंद है। और कोल्हापुर से तेजस्विनी चमाड़, विजय, अंकिता, अनिकेत, करिश्मा और इनका समस्त परिवार।

और अब हमराही फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा गाना। पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, मुस्तफ़ा खान, राहुफ और शाहिद। अकोला से रमेश कटनरकर और वैशाली कटनकर। इंदौर से रौनक रोशनी, बी आर नामदेव, राजश्री रौनक, दिव्यांशी रोशनी, धीरज, स्वाति, टोनी, निधि और इनका समस्त परिवार। देवास बड़ा बाज़ार से जाकिर हुसैन नजमी, तस्नीम नजमी, मोहम्मद

0: और आप कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं चरस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद आप सभी श्रोताओं की मूसाखेड़ी इंदौर से रवि डामोर, बबीता डामोर, संदीप दुर्गा, देवास से मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, देवास से ही सुभाष गोडिया, नवीन वर्मा, मीनू वर्मा, जमील खान नागपाल और राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला, गायत्री, विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद, पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉविन, इंदौर से हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता पाई घायल, सनिका घायल और गजानन येले, इंदौर से ही अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल, केतन और इनका समस्त परिवार, उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी, तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आसिफ, राजस्थान से इस गीत को पसंद किया है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने।
1: गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा अब से थोड़ी ही देर में।
1: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमणा से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
2: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरपु येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरपु येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya

0: as an A-grade artist of Akashvani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
0: इन टुनाइट्स कंसर्ट Sri Asanapurupu Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchare T.Z. Muthu Kumara Swami Pillai. He is a top grade artist of Akashwani.
1: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain Ninnu Kori Yunannura se. ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री एर्रैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरि युन्नानुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विथ नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
2: You are now listening to the saxophone recital by श्री अस्नापुरप एर्रैया in the रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया next presents सामगान प्रियकरम, a composition of गुरु सुरजानंद in राग कीरवाणी set to मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashvani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स

0: हाइड्रेशन कॉम्पिटिशन हुआ, इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ooh Myint Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party, BJP, has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palampur Municipal Corporation. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats and Nationalist Congress Party NCP 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi MVA had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4 and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing nomination papers for the elections. In the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru, RCB, at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, RCB were 133 for 5 in 14.3 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में सुबह 5:53 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। आप हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।